0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News
5: brought to you by
6: Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
7: समुराए गैर कानूनी गैर आईने कदम खिलाफ समुरा गुरबल कदम खड़ंदासी. पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी पीटीआई का लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर खत्म करने जो मुतालबो कर छो. बिलाल भुट्टो जरदारी जो केपीजे गवर्नर फैसल करीम कुंडी से फोन ते राबतो. फैसल करीम कुंडी बिलाल भुट्टो जरदारी के केपी में दहशतगर्द वारे वाकियन बाबत ब्रीफिंग दिनी. बिलाल भुट्टो जरदारी पीटीआई का लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर खत्म करने जो मुतालबो कदे केपी में हुकूमत दहशतगर्दी खिलाफ जंग वाले सूरताल के संभालने में पंजो किरदार अदा करे. चार अक्टूबर ते लाग माल लकी मरवत खां शुरू थींदो. पंज मार्च ते क्वाट में तरसंदो जंहिं बाद पेशावर में दाख़िल थींदो. केपी जे सूबाई वज़ीर शफी जान जो ऐलान. केपी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी लॉन्ग मार्च लाइ फंड मुहिम शुरू कंदे चयो आहे त चंदो ॾींदड़ सिंधी रियत बि चंदो जमो कराए सघनि था.
8: फिर एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है. कुछ दिन पहले खबरें हुई कि बागी पीटीआई इमरान खान से कुछ हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स की अदालत जेल में मुलाकातें हुई हैं, तो इस हवाले से कुछ बताएं कि क्या समस्या है.
9: आर्मी हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एंड वी विल नॉट आस्क एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स. आई हैव मेड इट रिपीटेडली क्लियर पॉलिटिक्स इज फॉर द पोलिटिकल पार्टीज. द गवर्नमेंट हैज मेड बाय द पॉलिटिशियंस फॉर द गवर्नमेंट एंड द पोलिटिकल पार्टीज. सो आई विल अगेन रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन प्लीज डोंट डू दैट. As far as your first question is concerned, इसका legal या पूरा status वैसा है वो government और जो Ministry of Law and Justice are the best one to tell you. हम आपको ये बता सकते हैं कि ये बड़ी बहुत बड़ा कलंक का टीका है. वो जिंदा हो या मुर्दा वो हिन्दुस्तान के मुंह पे लगा हुआ. रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जमहूरियत है, रियासत है तो आप और मैं.
7: पाक फौज और सियासत से को ताल्लुक न है. सियासत करना सियासी जमायतों का काम है. फौज कम सियासी मामले जो जवाब न दींदी. पाक फौज तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी चयो आहे त पहिरें बि वाज़े करे चुका आहियूं त सियासत सियासी जमायतुनि जो कमु आहे. ॻाल्हियूं बि सियासी जमायतुनि ऐं हुकूमतुनि विच में थींदियूं आहिनि. मुल्की सलामत ते को बि ठाह न थींदो. रियासत हूंदी त सियासत बि हूंदी, रियासत हूंदी त जमहूरियत बि हूंदी, रियासत हूंदी त तव्हां ऐं असां बि हूंदासीं.
10: You can see the Superman, please, find him, brother. Sir, हमें बताएं आपके क्या क्या करते हैं. तो अभी मूसा ये है जी हवलदार आसिफ मोहम्मद आसिफ ऑफ SSB who has been चुनाव वाली वोट करना चाहिए जो सेकंड वाली सेकंड सेकंड नो दिस इज मिनट मोहम्मद आसिफ एलियस आसिफ मूसा चुनाव कोर्ट ने इनको दी इसकी डेड बॉडी. इस डेड बॉडी वॉज रिकवर्ड बाय चुनाव कोर्ट एज पर देम ऑन 30th. So I would request my dear friend Havaldar Asif to tell something about himself that he's.
11: मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है. मैं बेसिकली डिस्ट्रिक कटक तहसील की देव पड़ने वाला हूँ. कल किसी टाइम कुछ दोस्त ने मेरे कॉल की थी. ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपको इंडियन आर्मी ने कश्मीर में शहीद कर दिया. आप किधर हैं? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ आपके सामने हूँ, मैं जिंदाबाद अलहमदुल्ला. इसके बाद मुझे इंडियन नंबर से कॉल आने शुरू हुई. उन्होंने मेरे से शादी डाटा पूछना शुरू किया कि आप किधर हैं, कौन हैं, उससे क्या लगते हैं. मैं वो नंबर बुला करता हूँ. फिर इसके बाद सोशल मीडिया पर मुझे आई नहीं पता चला कि इंडियन जो मीडिया है उन्होंने आपका जो डाटा है उसको इस्तेमाल करके आपको ऊंची लड़ाई में कश्मीर में शहीद कर दिया. मुझे तो खुद बहुत हैरानी होगी ये क्या हो रहा है. मैं अभी घर में बैठा हूँ तो किधर उन्होंने मुझे शहीद कर दिया. ये बहुत ही घनौना और झूठा और घटिया इल्जाम जो इंडियन मीडिया ने पता लगा. मैं इसकी जमा करता हूँ और अलहमदुल्ला मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ.
7: भारतीय फौज फास्ट फ्लैग ऑपरेशन एक भेरो बीहर बेनिकाब. पाक फौज अगुणे SS जे कमांडो के मारण वारी दवा कूड़ी निकती. आसिफ उर्फ मोहम्मद मूसा मीडिया आरो पेश आसिफ उर्फ मूसा आयत भारतीय फौज दवाबाद मुख्य फोन अचान शुरू थिया। भारतीय फौज पारा मुकाबले में मारण वाली दवा हैरत थी। मां जिंदा आया सभी के सामू आया। 2000 में फौज में भर्ती थी। 18 साल बाद SS जे मां रिटायर थियुस। हाँ फैमिली से गड रो आया।
1: Happened. I think I tried to explain to my brother over here that as far as India is concerned, we are prepared for everything that they are ready to do, because they are an unreliable, a country which believes in deceit and a country which believes in terrorism and which believes in their own hegemony in the region. So the only guarantee of peace against such a country is our own strength. And we, alhamdulillah, the people of Pakistan, its political military leadership and its soldiers, its armed forces have complete confidence in our strength and our cause. So that is the biggest guarantor of peace in this region. We are the biggest guarantor of peace in this region.
7: भारत के को ड्रामो करणो आए तो करे देखाए असो हृदय मल वधिक सख्त हों। DGISPR किरियल दुश्मन से टकराव असाज बदकिस्मती है। जो कुछ करण चाहन था तो कन असा सदाई तैयार हूं। अज जो हिंदुस्तान इनकॉन्स्तान बणजी वो है। वलहल कश्मीर की सूरत हाल सभी के सामू आए। कुलभूषण के जहाज किरण से एजाज दिनों वो। कुलभूषण जिंदा हो या मुर्दा भारत के मुंह से दाग आए। व्हाइट हाउस वजीर आजम शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो तस्वीरों जारी कर छ्यू। मुलाकात गजल कौम के जनरल असेंबली इजलास के मौके से आलमी अगवाण के मान में अमेरिकी सदर के आजाणे दौरान थी। वजीर आजम दौरे दौरान गजल कौम के जनरल असेंबली इजलास से खिताब करण से गडो गड केतर आलमी अगवाण से पिण मुलाकात कई हुई। हुकूमत पेट्रोल महांगो डीजल मामूली सस्तो करे छो। पेट्रोल 3.26 रुपया फी लीटर महांगो थन का नव अग 390.68 रुपया मुकरर। डीजल 1.01 रुपयो फी लीटर सस्तो थन का नव अग 399.34 रुपया थी वो। पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी कल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल और डीजल जहां नवा अग 2 अक्टूबर ला हूं। वडे वजीर मुराद अली शाह आज सदारत हेठ काबिना जो इजलास। सरकारी जमीन के अलॉटमेंट ए इस्तेमाल बाबत नो कानून आने जो फैसलो। कॉलोनाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट लैंडर एक्ट 1912 की जाए ते सिंध गवर्नमेंट लैंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 जो मसौदो पेश। मुराद अली शाह के काबिना मेंबर्स से एक नए कानून से 10 दिन अंदर तजवीज दियण की हिदायत। मीर रजा केस की जांच कदड़ अदालती कमीशन के मुद्दे में 15 दिन की बात। कमीशन 15 अक्टूबर ताए कम करे सकंदी। मुराद अली शाह सिंध गवर्नमेंट लैंडर मैनेजमेंट एक्ट 2026 बाबत फैसलो काबिना के इंदड़ इजलास में कयो वेंदो। सिंधु दरिया जो पानी पीण जड़ो न रहो। TDS वधी 940 ताए पुछी वयो। हैदराबाद जामशरो ए कोटड़ी के रहवासियों के पानी पीण लाए इस्तेमाल न करण की तंबी। पानी जो मयार खराब थियण सब मुख्तलिफ बीमारियों पखण जो खदशो भी जाहिर। कोटड़ी बिराज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पारा SA पगार सर्कल के खत लिखी गंदे पानी जो छोड़ बंद करण सखर बिराज में वधिक मिठो पानी छड़न की सिफारिश। खत में चयो आए तो मच्छुर डंड में पानी की सतह घटजण सब सूरत हाल वधिक खराब थी रही है। फौरी कदम न खाया व्या तो लखे मानों की सेहत लाए सघिन खतरा पैदा थी सघन था।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
12: Brought to you by सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
13: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
14: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
13: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
14: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
13: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
14: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
13: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
15: सुपर वाइट।
16: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

सहुजा चवंदा आहिनि त प्यार जॾहिं हासिल थी वञे त सुखनि जी सेज आहे, पर उहो ई प्यार जॾहिं सख़्त तबियत, बेरुखी, बेवफ़ाई ऐं बदतमादी जो शिकार थिए थो त पोए सूरनि जो समुंड बणजी वञे थो। हिन दुनिया में प्यार जा प्यासा माण्हू सॼी ज़िंदगी प्यार जी गोला में रुलंदा ऐं भिटकंदा आहिनि, त बि कंहिंखे प्यार नाहे मिली सघंदो। सचो प्यार ख़ुश नसीब माण्हुनि खे मिलंदो आहे ऐं प्यार चवंदा आहिनि त अंधो आहे। हूअं त रंग खे हू न रंग खे ॾिसंदो आहे न नसुल खे, प्यार न उमिरि जे फ़र्क़ खे ॾिसंदो आहे न ज़ात पात खे, प्यार बसि प्यार ई हूंदो आहे। जंहिं लाइ हमल फ़क़ीर चयो आहे, हमल चए हिकु ॾींहुं मूं वेही कयो वीचार, हमल चए हिकु ॾींहुं मूं वेही कयो वीचार त दिलि लॻी दोस्तीअ जो छा।

जी हाँ समझ आया प्रोग्राम रोशन सुबह मां बुध पाया जी एफ एम 88 के नेटवर्क ता तवाज असो साथ रो ठीक यारह वगे तीन वक्त हलूँ पाया कमर्शियल ब्रेक की तरफ कदम में न वजो असा गद गद।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अरे न, खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट। पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

बहितर ऐं अवां ॾिसंदो त हिन वक़्तु कुझु इलाइक़नि में बर्फ़ जो पाणी पीतो वञे थो थधो, किथे न बि पीतो वञे थो, पर जेकॾहिं अवां पाणी ॿाहिरीं बर्फ़ पीअंदो त ज़रूर लेस, ज़ुकाम, गलो ख़राब, बहरहाल कोशिश कयो त पाण खे बि पंहिंजो इन मच्छर खां, इन माक खां पाण खे बचायूं ऐं पंहिंजे नंढनि ॿारनि खे, पंहिंजे बुज़ुर्गनि खे बि बचायूं ऐं जेके असांजो माल मताव आहे, पखी पुखड़नि, असां उन्हनि जो बि ख़्यालु कयूं त बहितर थींदो। जो हीअ मौसम इहा ई आहे जो अॻ में बि चयो त वॾड़ा चई विया त पखो खणी बि अंदरि वञो, यानी कोशिशि कयूं त इन माक खां बचूं, इन मच्छर जे चक खां बचूं, त या थधो पाणी बर्फ़ जेका ॿाहिरीं आहे उन खुलियल बर्फ़ खां बचूं त असांजी सिहत बहितर थी सघे थी। ऐं साईं जा वरी ॻाल्हि कंदासीं ख़ुशी ऐं दुख या दर्द इंसान जी जेको आहे सो सिके जा ॿ पासा आहिनि। दर्द इंसान जो साथी हूंदो आहे, दर्द खे इंसान खां जुदा करणु मुमकिन ई कोन्हे। कंहिं चयो त दर्द कॾहिं बि अकेलो न ईंदो, दर्द खे दिलि चवंदा आहिनि त हूंदी कोन्हे। इहो बि चयो वेंदो आहे त उहा दिलि नाहे जंहिंमें दर्द नाहे। किन माण्हुनि जे दर्दनि सां दोस्ती थींदी थी वेंदी आहे ऐं उन्हनि खे ख़ुशियूं रास न ईंदियूं ऐं भोगनान बिना जीवन गुज़ारण जा आदि नाहिनि हूंदा। दर्द माण्हूअ जे वजूद खे अंदरां खोखलो करे छॾे थो, खाली करे छॾे थो। के माण्हू अंदर जो दर्द दिलि में लिकाए चपनि ते चवंदा आहिनि त फिकी खिल मसनोई मुर्क आणे इहो महसूस कराईंदा आहिनि, ॼण हू दर्द खां आज आहिनि। त खान साईं मुंहिंजा त वाकई ख़ुशी ऐं दुख जेके ज़ाहिरी हूंदो आहे त उहा वॾी ॻाल्हि आहे ऐं जेकॾहिं लिकियलु हूंदो आहे त उहो अंदर में खाए थो, उहो उॾही वांगुरु अंदर में खोखलो बणाए थो। त वाकई चवंदा आहिनि त ख़ुशीअ ॾुखनि खां पोइ ख़ुशी ज़रूरु हूंदी आहे, पर ख़ुशीअ खां पोइ बि ॾुख दर्द ज़रूरु थींदा आहिनि।

जी साईं मुंहिंजा ॻाल्हि कई हुओ मेरा चना दुख ॾे मरी न वञा रवंदे खिलाईंदी केरु पर के माण्हुनि जी ख़ुशीअ जा वरी मयार पंहिंजा पंहिंजा हूंदा आहिनि। नंढड़ो ॿार जेकॾहिं हुनखे ख़ुशी मिले ऐं रांदीका मिलनि त तमामु घणो ख़ुशि थींदो आहे। ऐं सरकारी मुलाज़िम वरी जॾहिं हुननि जी पघार वधंदी आहे या पघार पंहिंजे टाइम सां मिलंदी आहे त उहे ख़ुशि थींदा आहिनि। ऐं कारोबारी माण्हू जॾहिं हुनखे पंहिंजे धंधे कारोबार में फ़ाइदो पवंदो आहे त हुनखे ख़ुशी थींदी आहे। पर जॾहिं आशिक खे महबूब सां मिलण जे वक़्त बि तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे। ऐं किन खे वरी जेके दुआऊं मिलंदियूं आहिनि रुहानी जंहिंखे पंहिंजो इबादत जंहिंजी थींदी आहे त उहे बि घणो ख़ुशि थींदा आहिनि। हुनजा लम्हा तमामु सुठा गुज़रंदा आहिनि। ऐं के माण्हू सॼी उमिरि पंहिंजे गमन में गुज़ारींदा आहिनि। ज़िंदगी में जॾहिं वरी हुनखे का ख़ुशीअ जो लम्हो अहिड़ो ईंदो आहे जंहिंमें हू तमामु घणो ख़ुशि थींदा आहिनि। ऐं असुल चवंदा आहिनि त लुत्फ़ गमन जे तूफ़ाननि गुज़रण खां पोइ शदीद पंहिंजो ख़ुशी महसूसु थींदी आहे। ऐं के माण्हू वरी लोड शेडिंग बिजली जेका हूंदी आहे हुन जे अचण खां पोइ बिजली अचण ते वरी ख़ुशि थींदा आहिनि। कुझु माण्हू ख़ुशि थींदा आहिनि जॾहिं CNG या पेट्रोल जो अघु सस्तो थींदो आहे। ऐं बीमार खे आथत जो हिकु जुमिलो ॾाढी ख़ुशी ॾींदो आहे। को कंहिंजे भले कूड़ी साराह करे पर उहो तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे हुनखे। पर जॾहिं वरी पाण को सुरीलो आवाज़ ॿुधऊं कंहिं सुठे फनकार जे आवाज़ में को कलाम ॿुधऊं त पाण खे बि ज़रूरु ख़ुशी थींदी आहे। अचो त हीउ नगमो गॾिजी पिया ॿुधूं।

0: जी सभी प्रोग्राम रोशन सुबह बुध पाया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां तवाजो असो साथ रहंदो ठीक 11 वगे तई हन वक्त हलूं पिया न्यूज़ ब्रेक ए कमर्शियल ब्रेक की तरफ वरी वापस इंदासी असां सां गॾु गॾु वञो
1: इट्स 10 एएम
2: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
3: जी एफ एम 91.6
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya jo show. A product by Biocon International Pakistan.
5: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
8: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
9: Naam Mehmar and Nasir Shah bhi maujood hain.

0: happened, I think I tried to explain to my brother over here, that as far as India is concerned, we are prepared for everything that they are ready to do. Because they are an unreliable, a country which believes in deceit, and a country which believes in terrorism, and which believes in their own hegemony in the region. So the only guarantee of peace against such a country is our own strength. And we, alhamdulillah, the people of Pakistan, its political military leadership and its soldiers, its armed forces have complete confidence in our strength and our cause. So that is the biggest guarantor of peace in this region. We are the biggest guarantor of peace in this region.
1: भारत के को ड्रामो करणो आए तो करे डेखारे असो हृदय अमल सख्त हों डीजीआईएसपीआर है तो किरियल दुश्मन से टकराओ असाजी बदकिस्मती है जैसे वो कुछ करण चाहन था तो कन असा सदाई तैयार हुंदा अज जो हिंदुस्तान इनकाउंटरस्तान बणजी वो है वलारियल कश्मीर की सूरत हाल सभी के सामू आए कुलभूषण के जहाज किरण से एजाज डो वो कुलभूषण जिंदा हो मुर्दा भारत के मुंह से दाग आए व्हाइट हाउस वजीर आजम शहबाज शरीफ ए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो तस्वीरों जारी कर छड़ी मुलाकात गरियल कौम के जनरल असेंबली इजलास के मौके से आलमी अगवाणन के मान में अमेरिकी सदर के आजियाणे दौरान थी वजीर आजम दौरान गरियल कौम के जनरल असेंबली इजलास के खिताब करण से गरोगर केतर ही आलमी अगवाणन से पिण मुलाकातू कई हुई ए हुकूमत पेट्रोल महंगो ए डीजल मामूली सस्तो करे छड़ो पेट्रोल 3 रुपया 26 पैसा फी लीटर महंगो थे का पोए नव अंग 390 रुपया 60 पैसा मुकर्र डीजल 1 रुपयो 1 पैसो फी लीटर सस्तो थे का पोए नव अंग 399 रुपया 34 पैसा थी वयो पेट्रोलियम रिविजन पारा
2: शादी के बाद पहली बार ससुराल आए हो गिल्ट लिए बगैर कैसे जा सकते हो
3: बेटा एक्स्ट्रा कैलोरीज
4: छम छम किताबे लेके
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
8: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
9: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
10: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
9: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
10: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
11: सुपर वाइट
12: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: मोरो
3: नौशहरो
2: मीरपुर खास
3: लाड़काना
2: सक
4: खुश्क ऐं बीरोनो की स्किन हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट पर इहो कीअं तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जंहिंमें आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजी

0: फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन नमी के लॉक करे चावर जो खूबियो जल्द में फाइन लाइन्स झुरन के घट कर रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन दिन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे से चेहरे के मिले खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिटाई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुनते जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
1: सुनते जो आवाज बुधंदा रहो।
3: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: महबूब से प्यार कंदी आए, अणगणो प्यार कंदी आए, अणथक प्यार कंदी आए, पर एड़ा प्यार करण वाला वरी औरतन के जरूर बेवफा भी लगी वेंदा आहिनि।

जी सिम जा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असां हिन हफ़्ते अव्हां खां को बि सुवाल कोन कयोसीं ऐं पाण संगत खे कंहिंखे बि तकलीफ़ कोन ॾिनीसीं। त कुझु दोस्त चढ़ा परेशान बि थींदा आहिनि ऐं सुवाल ॻोल्हण में हुनखे तकलीफ़ थींदी आहे, ॾुखियाई थींदी आहे, पर हिन हफ़्ते असां सिर्फ़ अव्हां दोस्तनि जा नाला लिखियासीं जेके

चक्र में असांजो साथ ॾियनि था, असांजे सवाल जो जवाब ॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजा कोशिश करे नाला लिखाईंदा आहिनि। उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। हाफिज़ लखमीर ढिल्लू मोरे खां भा काल कई, हुनजी वॾी महिरबानी। एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान जुणे जो, मुजीब रहमान जुणे जो, नारो स्टॉप लॻे सब्ज़ी मंडी सखर खां, ऐं घोटकीअ खां अमीर बख़्श मंगणार, अब्दुरहमान लिगारी मिठा खान ऐं तालिब हुसैन लिगारी लटको मोरी खां, ऐं रामचंद कोली, कमलेश कुमार कोली ऐं गोविंद गुल कोली ॻोठ नोटो ज़िले थरपारकर खां, ख़ालिक लाचारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां, हाफिज़ मोहम्मद अमीन बारी जो खोड़ा गंबट खां, मोहम्मद अज़ीज़ जरवार मीरपुर ख़ासि खां, क़ुर्बान अली ख़ासकेली झंडो मरी खां, रियाज़ जरवार मीरपुर ख़ासि खां, इरशद अली कोराई लाड़काणे खां, ऐं फतेह मोहम्मद कनासरो, फराज़ अहमद फारूक अहमद कनासरो ऐं हुन सां गॾु आहे सैयद अहमद शाह बुखारी ॻोठ सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां, ऐं ज़ोहेब अली कटबर, जुनेद कटबर लाड़काणे खां, आमिर जिंजी, अतर हुसैन जिंजी नोटो जी नगरी खां, ऐं यासमीन मलिक मीरपुर ख़ासि खां, ज़मीर हुसैन मीराणी, फिदा हुसैन मीराणी, तारिक हुसैन मीराणी ॻोठ मसूब खां, ऐं नौंदर खां शहज़ाद अज़ीज़ाणे खां, मोहम्मद ख़ान कुंभार हाले पुटरा स्टाफ खां, ऐं हाफिज़ मोहम्मद यूनिस बबर सकरण खां। दोस्तनि जी तमामु वॾी महिरबानी। ऐं हाणे सोमेरा अली जो कलाम आहे, गॾिजी पिया ॿुधूं।

जी समय प्रोग्राम जा आखिरी लम्हा सुमेर अली जे इन कलाम सां अवां सां थोरियूं घड़ियूं आहिनि जेके अवां ताईं पहुचाईंदासीं। अवां जूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं जेके थियूं उन में असां अवां खां ज़रूरु मोकिलाईंदासीं। प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा आहिनि, वरी ईंदड़ हफ़्ते अवां सां ज़रूरु मुलाक़ात थींदी ऐं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो खे ॾींदा इजाज़त ऐं मुमताज़ मौलाई जो कलाम ॿुधंदा रहो, इंजॉय कंदा रहो।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर केटी. अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
5: Super White Oil Free Beauty Cream, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में.
4: अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.
7: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है. तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
8: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
7: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
8: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
7: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है.
9: सुपर वाइट.
7: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है. हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम. अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है. तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है. तुम कौन सी यूज करती हो?
8: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है.
7: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम.
8: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी. एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन.
7: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है.
9: सुपर वाइट.
10: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना।

एग्री करते हैं कि हाँ जी ये वो प्रोडक्ट है जो कि आपने बताए हैं और जो भी आपने इनके बारे में बोला है वो कुछ कम सही बोला है, हमने जब इसको इस्तेमाल किया है तो हमें थोड़े ज्यादा सही रिजल्ट्स मिले हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और अगर आपने यूज करने हैं सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स तो आप लोगों ने मार्केट जाना है और ले आना है सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को। अब इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो हमेशा जब आपको अपनी स्किन को एक अच्छा प्रोडक्ट देना होता है या अच्छा मतलब कि स्किन को बनाना होता है तो आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते अपनी स्किन के मामले में, अपनी खूबसूरती के मामले में कि हमें क्या यूज करना चाहिए। तो एक बार अपना दिल बड़ा करके ये अच्छा सा डिसीजन लेना है और वो डिसीजन है जो सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज करने का। और सुपर वाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ जी सुपर वाइट की राइज ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट की राइज ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं जी, और सुपर वाइट का राइस फेस वॉश भी आता है। तो अगर आप कोरियन ब्यास स्किन चाहते हैं तो सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम को यूज करेंगे, ठीक है जी। तो सुपर वाइट की राइस ब्यूटी क्रीम में कोलेजन भी मौजूद है और सुपर वाइट की ये राइस ब्यूटी क्रीम के साथ साथ इनका सोप भी आता है जी, सुपर वाइट राइस कोलेजन सोप। इसके अलावा सुपर वाइट राइस कोलेजन फेस वॉश भी आता है, इसके अलावा सुपर वाइट राइस ब्यूटी क्रीम सीरम भी आता है, ठीक है जी। तो ये राइस का कोलेजन सीरम है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो ब्यूटी क्रीम है उसका अलग से आपको सीरम भी मिल जाता है। और इसके अलावा जी सुपर वाइट का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश आता है, सुपर वाइट का ऑयल फ्री सोप भी आता है, इसके अलावा सुपर वाइट की ऑयल फ्री क्रीम भी आपको मिल जाती है। तो जिन लोगों की स्किन टाइप ऑयली है वो इजीली इस क्रीम को यूज कर सकते हैं और इजीली सुपर वाइट के ऑयल पस वाले पिंपल्स होते हैं वो हो, या फिर दूसरी ही टाइप की कोई एक्नी हो, वो जो छोटे छोटे पिंपल्स होते हैं या जो छोटे छोटे से दाने होते हैं जिनको हम गर्मी दाने भी कहते हैं, तो अगर फिर पिंपल्स बन जाते हैं तो अगर वो वाले हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्नी की सारी टाइप्स में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और वो क्या है, सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्नी क्रीम। तो सुपर वाइट की ऑयल फ्री एक्नी क्रीम को भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं और वो कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा और मेरे साथ आगे चलना पड़ेगा। इसके अलावा जी सुपर वाइट के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें सुपर वाइट की कोरियन फॉर्मूला स्ट्रॉबेरी क्रीम भी आती है और साथ में कोरियन फॉर्मूले की स्ट्रॉबेरी ब्राइटनिंग फेस वॉश भी आता है जी, और इसके अलावा सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम भी आती है, सुपर वाइट की एंटी डलनेस टर्मेरिक फेस वॉश भी आता है जी, इसके अलावा सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम और साथ में इसका फेस वॉश। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे और इन्हीं के बारे में हम पूरे प्रोग्राम में बात भी करने वाले हैं और प्रोग्राम को हम आगे भी लेके चलेंगे। और इसके साथ साथ हम सबसे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला कलाम, क्योंकि आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे की मुनासिबत से हम फ्राइडे का जो शो है वो कुछ इस तरह से लेके चलेंगे कि इसमें आप लोग सूफी कलाम या फिर हमदिया कलाम या फिर नात वगैरह सुन सकते हैं, ठीक है जी। तो जितने लोग कॉल करेंगे हमारा जो सेगमेंट होता है सुर लगाओ गाना सुनाओ, उसमें आप लोग नात या कोई कलाम भी सुना सकते हैं।

तीन दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम। अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जेह में आहिन चार अंजू खूबियों आई कोच कैसे फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जी खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल बीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
4: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नू।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिता
0: सिंध जो आवाज अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसई नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा
2: रिंकल्स और दाग

0: को मिटाकर स्किन को क्लियर करें, दिन ब दिन जिल्द को ब्राइट करें, 3 दिनों में चेहरे को गोरा और खूबसूरत बनाएं और चेहरे को दे फूलों जैसी ताजगी हर रोज। एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल। हेल्पलाइन नंबर 0307-346-8474।
1: अदी छा गाला एडो खुश पई नजर अची।
2: हा भेण बस खबर है कुछ एड़िया हाने सा और तू भी पंजी तकलीफ आसानी सा बुधाए सगु थियु।
3: जी हां, सिंधु जी पहरी फीमेल यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी जे पंजी FCPH यूरोलॉजी जी डिग्री मा लखे रुपया कमाण बदरा लाड़काने में औरतन लाए फ्री अस्पताल शुरू कई आहे, जिते बुकिंग जी बीमारिन मसलन पेशाब में रुकावट, जलन ए साड़ो, जख्म, बेओलादी, बुक्की ए मसाने जी नाली में पथरी जो ऑपरेशन जदीद लेजर चीरे वसीले करे थी। याद रखना डॉक्टर साहिबा चकास बुकिंग जो अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त कंदियो आहिन। बस कमरे दवा जो थोरो खर्च मरीज पाण भरींदा। हाँ, एक्सरे, IVP CT स्कैन पिण अध पैसन में कराए दे थी। पेशावराना डॉक्टरन डां मरीज खणी वेंदड़न जे भुलाइण ते तवज्जो न दियो। एड्रेस अल निसा मेडिकल सेंटर, नद सिटी चौक, सचल कॉलोनी, लाड़काणो। टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं, आचर ते मंझन जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 0334-224-1869।
0: मोरो
4: नौशहरो
0: मीरपुर खास
4: लाड़काना
0: सखर
4: गूंज रही है हर जगह पर
0: सिंध की आवाज
4: GA FM 88 नेटवर्क।

0: प्यार।
1: तो साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे लाइव कॉल्स और बहुत सारे मैसेजेस जो कि आप लोगों के मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम सबसे पहले मैसेजेस और कमेंट्स की तरफ आते हैं जी। तो हमें ट्यूनिंग किया है जी गोट मोहम्मद तैयब थेबो से, हबीबुल्ला थेबो ने, और प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आप भी लगाएं सुपर वाइट की कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप चाहते हो कि ये मैं लगाना चाहता हूं, और वो लगाएं, क्योंकि वही करना चाहिए जो इंसान का दिल चाहे या इंसान का दिल करे, और फिर उस चीज में जो है ना आप मुतमईन होते हैं और आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं, रशीद खोसो ने हमें कमेंट किया है। अब्दुल रजाक कुंबर हमें सुन रहे हैं, रशीद खोसो के साथ साथ हमें कौन सुन रहे हैं जी, कामरान अली सुन रहे हैं। नजीर खोसो लिखते हैं कि कभी कभी सुकून चीजें हासिल करने में नहीं, उनसे दिल हटा लेने में होता है। जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे अमानत समझो, मिल्कियत नहीं। दिल जब मेरा दिल जब
0: प्यार है, हाँ, ये प्यार है।
1: ओके जी, आपको कमेंट गायब हो चुका है, समझने के चक्कर में कमेंट ऊपर चला गया है जी, कोई बात नहीं। हाँ, जब मेरे सामने आता है तो मैं उसे दोबारा रीड करती हूँ। कामरान अली वंस अगेन हमारे साथ मौजूद है जी, और जुल्फिकार बोजदार हमें सुन रहे हैं, और शदमरी कहते हैं सलाम, कैसी हो जी, बहुत अच्छी हूँ। मोहम्मद सिद्दीक लुंड हमें सुन रहे हैं, गोट वलीदात खान लुंड से, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अरशद मरी हमें सुन रहे हैं, वेरी नाइस शो आपका, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जी फ्राइडे का दिन है और बहुत सारी पोइट्रीज आप लोग सेंड कर रहे हैं, वेरी बैड। कुछ सुपर वाइट के बारे में भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा रुखसार, यू आर जस्ट ब्यूटीफुल, यू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट एंड ब्यूटीफुल वॉइस। ओके, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, आपने बता दिया, थैंक यू। और इसके अलावा जी कॉल्स आप लोगों की लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक कलाम प्ले करते हैं जी। मेरे ख्याल से हम नात प्ले करते हैं, हाँ नात प्ले करते हैं, और नात के साथ फिर हम आगे चलते हैं। एंड हियर कम्स, देखने को या मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं।

0: कॉल्स आप लोगों के लेना स्टार्ट करते हैं 03000113488 के ऊपर. फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, हम चेक करेंगे कौन और कहाँ से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं. जी हेलो.
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम. सागर भाई बात कर रहे हैं.
1: जी मैम,
0: सागर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं.
1: खैरियत.
0: नात सुनाएंगे हमें कोई अच्छी सी
1: नात
0: या कोई कलाम सुनाएंगे? क्योंकि फ्राइडे का दिन है तो हम गाने की जगह हमदिया कलाम या सूफी कलाम या कोई नात आपसे सुनेंगे.
1: नात तो मैं सुनाऊंगा.

0: मदद कीजिए ताजिरा रे मदीना।
1: ओके जी, और कुछ कहेंगे?
2: नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस आप शो में आ गए, शो आपका चल गया, यही बहुत काफी है मेरे लिए।
1: ओके सी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज जी। और नात हम आपकी प्ले करेंगे और उससे पहले हम चलेंगे आगे जी। और आगे कैसे जाएंगे हम, आप लोगों के बहुत सारी कॉल्स लेंगे, 03000113488। अच्छा, कॉल से रिलेटेड ये है कि कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं, एंड वो जो रूल्स हैं ना, वो कुछ इस तरह हैं कि जो लोग डेली बेसिस पर कॉल कर रहे हैं, लाइक जिन लोगों ने कल कॉल की तो वो आज कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, और जिन लोगों ने आज कॉल की वो फिर कल कॉल नहीं करेंगे। तो अगर डेली बेसिस पे सेम वही दो चार कॉलर्स आएंगे तो हम नए लोगों को मौका नहीं दे पाएंगे। तो अगर ये रूल होगा तो अच्छा होगा, मतलब कि डेली बेसिस पे सेम कॉलर्स आर नॉट अलाउड, तो ये होगा। और इसके साथ साथ जी, उन लोगों को हम मौका देंगे जिन लोगों की जो कॉल है ना वो कभी कभार लगती है या वो लगाते हैं, तो उन लोगों की लगनी चाहिए, ठीक है।

जी जी, साथ साथ आप लोग फॉर्मूला बना सकते हैं जी, कैसे? वो ऐसे बना सकते हैं कि सुपर वाइट के ही प्रोडक्ट्स को आप लोग लेंगे, ठीक है। सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को लेने के बाद अब उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा सा एक मुकम्मल पैकेज, जिससे आपकी मुकम्मल खूबसूरती जो है इन्हेंस हो जाए। लाइक अगर आपके फेस के ऊपर अगर पिम्पल्स हैं तो पिम्पल्स खत्म होने के साथ साथ जो है आपकी डार्क कॉम्प्लेक्शन भी फेयर हो जाएगा, क्योंकि आजकल सब लोगों की जो खूबसूरत लगने की पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि रंग चिट्टा गोरा होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्शन का बहुत खास ख्याल रखते हैं आजकल सब लोग कि कॉम्प्लेक्शन डाउन नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए बस कॉम्प्लेक्शन डाउन नहीं होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होगा और साथ में अगर एक्नी है तो एक्नी खत्म होगी, या अगर आप जस्ट पिगमेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो पिगमेंटेशन भी खत्म होगी, या फिर अगर आप लोगों को कोई और इश्यू है, स्किन टोन अच्छी नहीं है आपकी, बेरौनक सी स्किन है, बेजान सी स्किन है, कोई रौनक नहीं है चेहरे पे और स्किन की वजह से आपके चेहरे के ऊपर 12 बजे रहते हैं, तो 12 के आप लोगों ने थोड़े कम बजाने हैं, 12 से थोड़े कम बजाएंगे, ठीक है, और चेहरे को खूबसूरत बनाएंगे। अच्छा, फार्मूला कैसे तैयार करेंगे आप लोग? सबसे पहले आप लोग जो है सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम लेंगे, ठीक है। सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम के साथ साथ आप लोग सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्नी क्रीम लेंगे और उसके साथ लेंगे सुपर वाइट ऑयल फ्री सीरम, ठीक है। सुपर वाइट ऑयल फ्री बूस्टर सीरम ये आ जाता है जी, और इन तीनों को आपस में आप लोगों ने करना है अच्छे तरीके से मिक्स। एक आप लोगों ने जार लेना है, मेक श्योर कि आपका जो जार है वो स्टील का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो जार है या तो वो एक अच्छी सी प्लास्टिक का होना चाहिए, या अगर ग्लास का जो बाउल है वो हो तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है जी। उसमें आप लोगों ने ये सारी चीजें ऐड करनी है, ऐड करने के बाद उसी में आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको जार में स्टोर कर लेना है, ठीक है। जार में स्टोर कर लेंगे और स्टोर करने के बाद इसको रख लेंगे, और रख के आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ रख के छोड़ नहीं देना है, इसको यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करने के लिए बनाया है। और यूज कैसे करना है, रात को सोने से पहले आप लोग फेस को वॉश करेंगे सुपर वाइट के फेस वॉश से, जो कि ऑयल फ्री फेस वॉश है। इसमें एवोकाडो की बहुत सारी खूबियां हैं, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश है, ठीक है, तो ऑयल को कंट्रोल करेगा। जब ऑयल कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्नी जो है कम होते होते खत्म हो जाएगी।

केपीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्स जो ऑपरेशन सत ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया। इदक वारे इलाइक़े में गुझी इतलाहती ऑपरेशन दौरान सत ख़ारिजनि खे जहन भेड़ो कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्स जो ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में सत ख़ारिज ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयूं जारी आहिनि। सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे लाइ पुरअज़म आहे। लाड़काणे में छठीअ जी तकरीब में हवाई फायरिंग गोली लॻण सबब नौजवान मारिजी वियो। ॿ ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ कादिर बख़्श भुटो में हवाई फायरिंग दौरान गोली लॻण सबब रायल चनो मारिजी वियो। ॿ ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। पुलिस वाके वारी हंधि पहुची नौजवान जो मड़ ऐं ज़ख़्मी खे खणाए अस्पताल पहुचायो।

0: सजावल में गर्ल्स हाई स्कूल के क्लास रूम की छत जा चापड़ किरण पाया। टे शागिर्दाणियों जख्मी। मैट्रिक की क्लास रूम की छत जा चापड़ किरण सबब शागिर्दाणी निदा सोनी ए सलीमा जख्मी थी। जख्मी शागिर्दाणियों के अस्पताल मुंतकिल किया है। शहरी पारा स्कूल की मरम्मत कराने का मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर व्हाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

welcome back once again. I'm Sunray Hehen. Zindagi Gulzar here, sponsored by Super White Products. By Aksa Cosmetics or Aksa Cosmetics, jo ki aap logo ke liye banate hain itne khoobsurat bana dene wale products ki pehle kabhi aap logo ne itne khoobsurat bana dene wale products kabhi use nahi kiye honge. To ab use kar le aur apni skin ko khoobsurat banaye, apni acne ko khatam kare, apni pimples ko khatam kare, apni dark circles ko khatam kare, kyunki khoobsurat lagna har insaan ka pura pura haq hota hai. To khoobsurat lage aur apni skin ko खूबसूरत बनाएं, अपनी स्किन का बहुत खास ख्याल रखें, अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें, जैसे कि सुपर वाइट और सुपर वाइट की विटामिन सी क्रीम, जो कि सर्दियों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगी आप लोगों की स्किन के लिए, क्योंकि एक तो ये एंटी एजिंग है, ठीक है, और दूसरा ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है, और तीसरा अगर आपके स्किन के ओपन पोर्स हो गए हैं, आपकी स्किन के ओपन पोर्स इसलिए हो जाते हैं जब कभी आपकी स्किन के ऊपर एक्ने निकल आती है, और कभी ना कभी मतलब हर इंसान की एक ऐसी उम्र आती है जहां पे उसको एक्ने, बहुत शदीद वाली एक्ने फेस करनी पड़ती है, ठीक है. तो आपकी एक्ने, उस एक्ने की वजह से आपकी स्किन के ओपन हो जाते हैं पोर्स, और उन्हीं पोर्स को मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो पोर्स जो है ओपन रह रहे के बहुत ज्यादा मतलब के स्कार्स बन जाते हैं बड़े बड़े. तो उन स्कार्स को खत्म करने के लिए या अपने ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, जिन लोगों के अभी अभी पोर्स ओपन हुए हैं पिम्पल्स निकलने की वजह से, तो वो उनको यहीं पे मिनिमाइज कर लें और वाइटामिन सी क्रीम इस्तेमाल करें जी, सुपर वाइट वालों की, ठीक है. ये पोर्स को मिनिमाइज करेगी और स्कार्स को भी खत्म करेगी, आपके डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगी, इसके अलावा आपकी जो एजिंग स्पॉट्स है ना उनको भी रिड्यूस करेगी, आपकी स्किन टोन को इवन टोन में लेकर आएगी जी, आपकी फेयरनेस को इंक्रीज करेगी. तो एक ही क्रीम में 7 फायदे हैं, देखिए मैंने गिन भी लिए हैं, यानी कि 7-in-1 ब्यूटी, वाओ. तो इसमें एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं जी, नेचुरल लेमन के और नीम एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं, जो कि इसके रिजल्ट्स को मजीद और इनहेंस करते हैं. अच्छा, इसके रिजल्ट्स को अगर आप डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं, तो वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम के साथ वाइटामिन सी फेस वॉश को भी यूज करें. वाइटामिन सी फेस वॉश को यूज करेंगे ना तो आपको डबल से ट्रिपल रिजल्ट्स मिलेंगे. जब भी फेस को वॉश करें, दिन में करें, रात में करें, जब भी करें, जहां भी करें, इसी फेस वॉश से करें. और फेस वॉश को तो आप इजीली बैग में भी कैरी कर सकते हैं, जितने भी खवातीन हैं या फिर मर्द हजरात हैं, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं जी. दोनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और आपको डबल से ट्रिपल रिजल्ट्स मिलेंगे. इसमें भी आप लोग बूस्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि मजीद और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो बूस्टर को ऐड कर लें इसमें भी, नो इश्यू, आपकी स्किन को मजीद और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे इससे. तो सुपर वाइट की वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम, नाम याद कर लें, सुपर वाइट की वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम, ठीक है, और सुपर वाइट का वाइटामिन सी फेस वॉश. तो ये 7-in-1 ब्यूटी है, और यही वजह है कि सुपर वाइट आपकी स्किन को दे रही है खूबसूरती वाला खूबसूरत सा ग्लो और बहुत खूबसूरत सी खूबसूरती. अच्छा, इसके अलावा आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. सैमसंग कॉलर्स आर नॉट अलाउड, पहले से बता रही हूँ, कॉल ड्रॉप करूंगी तो फिर ना कहिएगा कि हमें बुरा लग गया, ठीक है. तो बुरा लगाने वाली कोई बात नहीं है, ना कोई जरूरत है. आप लोगों ने जस्ट इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपने एक दिन कॉल की है तो अगले 2 दिन तक आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है. एक दिन कॉल करके 2 दिन रेस्ट करें, फिर कॉल करें. 2 दिन आप आराम से तसल्ली से प्रोग्राम सुने, नई कॉलर्स को सुने, मजा आएगा. अच्छा, इसके अलावा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, सिंपली SKR टाइप करें अपने मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में जाके, और फिर अपना मैसेज टाइप करें, सेंड करें 888 पे. और कमेंट कर रहे हैं आप लोग, हमारी ऑडियो स्ट्रीमिंग इस वक्त एग्जैक्टली लाइव है हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, दैट इज GFM 88 एंड GA लाड़काना FM 88.8, ठीक है. तो यहाँ पे आप लोगों को ऑडियो स्ट्रीमिंग्स मिल जाती हैं, एंड साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. स्मार्ट किशोर ने हमें कमेंट किया, स्मार्ट हाजिर है वापस जाने के लिए. लगता है मैडम छुट्टी नहीं दे रही आजकल आपको, कोई रेस्ट या ब्रेक वगैरह भी नहीं दे रही आपको.
مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اچھا اس کے علاوہ عبد الجی کیسر ہمیں سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. اور پتا نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے, بڑا لمبا سا کامنٹ کیا ہے شی. اور اس کے علاوہ کامران علی نے بہت سارے کامنٹ کیے ہوئے ہیں, اور کامنٹ کی طرف بھی چلیں گے اور کالز بھی لے لیں گے 03001134888. اور ساتھ ساتھ ہم ایک کلام بھی پلے کرتے ہیں جی, کلام کے ساتھ پھر کامنٹس کو انکلوڈ کرتے ہیں. سو کلام میرے پاس موجود ہے بہت خوبصورت, شاہ مردان علی, سنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں.

जाते हैं नेल्स, हाथ पांव बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आप इसको अपनी मॉइस्चराइजर में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो इस काम भी आती है, दूसरा नेल्स के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके नेल्स बहुत ज्यादा सर्दियों में ड्राई रहते हैं मेरी तरह, तो नेल्स के ऊपर आप लोग इजीली इसको लगा सकते हैं, रात को भी लगा के सोएं, दिन भर लगाते रहें, ठीक है। इसको आप अपने साथ कैरी करें बैग में, अगर आप ऑफिस वर्कर हैं या आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवल में हैं, तो ट्रैवल में भी आप इसको साथ रख सकते हैं। तो ये एक बहुत कमाल की चीज है जी, बहुत मजे की चीज है। और इसके अलावा जी सुपर वाइट के वैसे सारे ही प्रोडक्ट बहुत मजे के और कमाल के हैं। तो ये पेट्रोलियम जेली भी आप लोगों ने यूज करनी, और ये बातें करते करते मेरा जो मेरी जो नजर है ना वो गई है जी टाइम के ऊपर, तो हमें लेना पड़ेगा एक अदद कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, और ब्रेक के बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन दीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: अरे न खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइट छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम जेह में आहिन चावरन जो खूबियो ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चावरन जो खूबियो जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
4: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज.
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो.

0: 0334224169।
1: छा अवां के या अवां जे कहें बे मिट माइट के छिन, गले जो गुदूद, पिते जी पथरी, थायराइड, मोका, पेट ए छाती जो बीमारियों या कहें बे ऑपरेशन जो मसलो आहे, त हाणे अवां के फिक्र करण न घुर्जे। मशहूर ए तजुर्बेकार कंसल्टेंट जनरल सर्जन डॉक्टर पिरह मेमण, MBBS, FCPS, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर में मरीजन जो मुआइनो ए इलाज करे रही आहे। एड्रेस: तैमूर हेल्थ कॉम्प्लेक्स, सामू आर्ट्स काउंसिल, सचल कॉलोनी, लाड़काणो। टाइम: रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताई। आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताई। राबते ए मालूमात जे लाइ 0744752474। डॉक्टर पिरह मेमण, अवां जी सिहत असां जी जिम्मेवारी।
2: अनीसा, खैर तो आहे? मंडकाए तो घुमे, धक लगो तई छा?
3: हाओ यार अब्दुल्ला, एक्सीडेंट में जंघ जो हडो भजी पियो आ। तोखे त खबर आ, गरीबी हाल आ, पैसा भी कोन्हनि के। सोचियां तो ऑपरेशन किथां करायां।
2: भाऊ परेशान न थी, लाड़काणे में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफा ऑपरेशन मुफ्त करे तो, इलाज भी अड़ो सुठो तो करे जो ठीक भी जल्दी थी वेंदे।
1: गरीब तोड़े अमीर लाए खुशखबरी, डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी, MBBS, FCPS, आर्थो, हडन ए जोड़न जो माहिर सर्जन, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन, सिविल हॉस्पिटल, लाड़काणो। इते रोजानो हडन ए जोड़न जे मरीजन जो फी सबील लाह इलाज कयो वञे थो, जंहिंमे रोजानो चकास मुफ्त, रिपोर्टू 40% फ्री, एक्सरे 40% फ्री, ऑपरेशन में डॉक्टर जी का भी फी न आहे। असां वटि हडन ए जोड़न जो सूर, संदन जो सूर, कुन रग जो सूर, यूरिक एसिड, चेल जो सूर, शुगर जा फट, हथन पेरन जो सुन थियण, पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरन जो इलाज, भगल हडन जो ऑपरेशन बेहतरीन नमूने कयो वेंदो आहे। एड्रेस: कराची मेडिकल सेंटर, लग घिंटी फाटक, लाड़काणो। टाइम: रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं। आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं। छंछर ते क्लिनिक बंद रहंदी।
4: डॉक्टर साहब हर अंगारे ते शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं शान मेडिकल सेंटर वकील कॉलोनी लाड़काणे में मरीजन जो मुफ्त मुआइनो कंदा।
1: राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 0315879417 0333754061।
5: खुश खबरी, ए टू जेड यूनिफॉर्म सेंटर लाड़काणे ते अवां के हर शइ मिले हिक ही छत हेठा। अवां के आला मयार जो यूनिफॉर्म घुर्जे, मजबूत स्टाइलिश स्कूल बैग या पायदार शूज, ए टू जेड यूनिफॉर्म ते मिले अवां के यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, शूज, ऐं बियो स्कूल जे जरूरत वारो सामान बाजार का इंतहाई घटि क़ीमत में। कोई देर छा जी, अॼु ई अचो, असांजी ख़ुसूसी ऑफर जो फ़ाइदो हासिल करियो, ताकि अवां जा ॿार रहनि स्कूल जे लाइ हमेशा तयार ऐं मुतमिन। एड्रेस: ए टू जेड यूनिफॉर्म, GPO रोड, लाड़काणो। राबते जे लाइ मैनेजर वकार अली, मोबाइल नंबर 0313117576।
6: अजरक के रंगों से रंगी,
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
6: सिंध के दिल से निकली आवाज,
7: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

DJ, welcome back once again. Afton Rains and the Eagles are here, sponsored by Super White, by Aksa Cosmetics or Super White K Products. जो कि बहुत खूबसूरत बना रहे हैं आपको. लास्ट लिंक में हम वापस आ चुके हैं जी. और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल्स कर सकते हैं जी. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. और इसके अलावा 8881 पे आप लोग मुझे मैसेजेस कर सकते हैं. और इसके अलावा आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर. इसके अलावा जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल रहा है इस खूबसूरत से सफर में. और ये खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम जली, ठीक है, पेट्रोलियम जली इनकी आती है जी कोकाओ बटर के फ्लेवर में, रोज के फ्लेवर में आती है जी. और रोज के साथ साथ लेमन के जो है फ्लेवर में आती है. आप इसको यूज कर सकते हैं. और सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम तमाम उन लोगों के लिए, तमाम अनमर्द हजरात और खवातीन के जो कि ऑयली स्किन वाले हैं, ऑयली स्किन है उनकी, तो इसमें मौजूद है जी एवोकाडो की बहुत सारी खूबियां, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट जो कि आपकी स्किन को ऑयल मजीद उस पे आने से रोक देते हैं. और जब ऑयल आपकी स्किन का कम हो जाएगा इसके इस्तेमाल से, तो डेफिनेटली आपकी जो पिंपल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे. क्योंकि ज्यादातर पिंपल्स और एक्ने का इश्यू उन्हीं लोगों को होता है जिनकी स्किन टाइप ऑयली होती है. ऑयली है तो सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम यूज करें, प्लस उसके साथ सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश भी जरूर यूज करें, ठीक है. और यूज करने के बाद पहले ही 3 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको हेल्दी स्किन मिलेगी. और साथ में आप इसके सुपर वाइट का बूस्टर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. तो बूस्टर ऐड करेंगे सुपर वाइट ऑयल क्रीम में. क्या कर सकते हैं सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम से, सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम जो कि आपको मिल जाती है. और सारे ही प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं इजीली मार्केट से. और सुपर वाइट ऑयल फ्री एक्ने क्रीम जो कि आप सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम में ऐड कर सकते हैं, और साथ में इसका बूस्टर ऐड करेंगे, ठीक है. बूस्टर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, ठीक है. बूस्टर या सिरम आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं. एक अच्छा सा एक्नी गो फॉर्मूला तैयार है आप लोगों के लिए, तो इसको आप यूज कर सकते हैं. और सुपर वाइट की हेयर रिमूवल क्रीम भी आती है जी साथ साथ, इसके बारे में भी मैं आपको बताती जाऊं. सुपर वाइट की हेयर रिमूवल क्रीम जो कि आपकी स्किन को सेफली क्लींस करती है और आपके हेयर्स को रिमूव करती है, ठीक है जी. आप अपने इसको हाथों पर यूज कर सकते हैं, हाथों के जितने भी अनवॉन्टेड हेयर्स हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे. लेग्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां जहां आपके अनवॉन्टेड हेयर है आप वहां पे स्किन पे लगा के अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं जी इजीली. तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जो कि हेयर्स को रिमूव करेगी. और इसके साथ साथ ये तमाम खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो लेके आए ग्लो, लेके आए खूबसूरती, लेके आए इन तमाम खूबसूरत प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन टाइप से रिलेटेड, ठीक है. तो आपको पता चलेगा कि कितने कमाल के और खूबसूरत बना देने वाले प्रोडक्ट्स हैं. अच्छा, साथ साथ सुपर वाइट का राइस ग्लो फेस वॉश जिसमें कोजिक एसिड कॉलेजन मौजूद है, ये सारी चीजें इतनी कमाल की चीजें, इतने कमाल के इन्ग्रीडियंट्स इसमें मौजूद हैं कि आपकी स्किन को हेल्दी बना देंगे. आपको कोई और चीज यूज करने की जरूरत नहीं है. ये प्रोडक्ट्स वो वाहिद प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्किन को मोर हेल्दियर बनाएंगे, ठीक है जी. तो सुपर वाइट राइस फेस वॉश जिसमें कोलेजन भी मौजूद है, कोजिक एसिड मौजूद है जो कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है. तो फेस वॉश आप लोग ये वाला यूज करें, और यूज करने के बाद आपको मिलेगा वो ग्लो जो कि पहले कभी किसी और फेस वॉश से नहीं मिला होगा. तो अगर एक अच्छे फेस वॉश की तलाश में है तो ये वाला यूज कर सकते हैं. और भी बहुत सारे फेस वॉशेस की रेंज है जी सुपर वाइट वालों की, जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन सी फेस वॉश भी इनका आता है. खास तौर पे वो तमाम तर लोग जिनकी स्किन पे ब्लैमिशेस लाइक बहुत सारी पिगमेंटेशन और छाइयां हो जाती हैं, और उसकी वजह से उनकी जो स्किन टोन है वो इवन नहीं रहती है, और उनकी स्किन पे छाइयां होने की वजह से
سے ان کا کمپلیکشن کہیں سے ڈارک کہیں سے بہت زیادہ وائٹ یا کہیں سے بہت زیادہ ڈارک, تو اس طرح کی سچویشن کچھ فیس کے اوپر بن جاتی ہے. اور اگر فیس کے اوپر ہی ایسی چیزیں ہوں گی تو بندے کا سارا کانفیڈنس ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی اسکن کا بہت سارا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اچھے پروڈکٹس کا انتخاب کرنا ہے, اور انتخاب کرنا ہے آپ لوگوں نے سپر وائٹ وائٹامن سی کا. اگر خاص طور پہ آپ لوگوں کی اسکن کے اوپر چھائیاں موجود ہیں تو وائٹامن سی کی

0: ब्यूटी क्रीम आप लोग यूज कर सकते हैं, सुपर वाइट की विटामिन सी ब्यूटी क्रीम और साथ में इसका फेस वॉश पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आज ही मार्केट जाके बाय करें, ठीक है, आपको हर जगह से ये प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाते हैं। साथ साथ हम कमेंट्स की तरफ भी आते हैं जी, कमेंट्स के साथ साथ मैसेजेस की तरफ भी आएंगे। और कमेंट हमें कर दिया है जी नजर मोहम्मद भट्टी ने। नजर मोहम्मद भट्टी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे रुखसार, आपका नाम बहुत अच्छा है, नाइस प्रोग्राम फ्रॉम मचियारी। थैंक यू सो मच नजर मोहम्मद भट्टी। और रशीद खोसो हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा सनाउल्ला जरवार हमें सुन रहे हैं, सनाउल्ला जरवार थैंक यू सो मच। और फैसल अहमद दानी हमें सुन रहे हैं, कामरान अली के बहुत सारे कमेंट आए हैं, साथ साथ हम कॉल्स भी लेंगे। नेक्स्ट कॉलर, हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से
1: बात कर रहा
0: हूँ? ओके, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक ठाक, मुझे बताइए।
1: ये जिंदगी गुलजार है, बिल्कुल हम डेली सुनते हैं।
0: ओके, जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय, वेरी गुड, यानी कि बहुत शौक और बहुत गौर से सुन रहे हैं, इससे पता चलता है।
1: जी बिल्कुल, नंबर नहीं लग रहा था, आज लगा है इतने सालों में।
0: बिल्कुल जी, नंबर नहीं लगता और यही तो वाहिद मसला है कि नंबर नहीं लगता, और मैं इसीलिए तो कहती हूँ कि सेम सेम कॉलर्स आर नॉट अलाउड। तो फाइनली आज आपकी कॉल लग गई है। मुझे बताएं कि सुपर वाइट का कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे आप?
1: इंशाल्लाह ताला, ये आपका गौर से मैं प्रोग्राम सुन रहा था। जी जी इंशाल्लाह,
0: चलिए जी, जरूर यूज कीजिएगा और यूज करने के बाद जरूर बताइएगा कि कैसे रिजल्ट्स मिले हैं आपको। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: मोलाई का गाना सुनाएं।
0: मोलाई का गाना हम कल सुनाएंगे क्योंकि आज जुम्मा है, ठीक है?
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: चलो ठीक है,
0: आपको हम कलाम सुनवाते हैं। अच्छा सा
1: कसीदा सुनाए कोई?
0: चले कसीदा सुनाते हैं आपको। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें।
1: थैंक यू,
0: ओके, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू। और 03000113488 नेक्स्ट कॉलर लेंगे जी, टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा कॉलर्स ले लूं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: बाजी रुखसार मोहम्मद आलम बात कर रहा हूँ, सलाम कंदरा से।
0: पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी।
0: ओके, वेलकम टू द शो, मुझे बताएं कौन सा शो है ये?
2: जिंदगी गुलजार है बाजी।
0: जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय,
2: वो पता नहीं होगी,
0: पता नहीं है, चले पता ये भी चल जाएगा। मुझे बताएं, मैं जो प्रोडक्ट्स बता रही हूँ वो यूज करेंगे?
2: इंशाल्लाह यूज करेंगे।
0: कौन से? वो नाम तो आपको पता नहीं है?
2: नाम तो भूल गया हूँ।
0: सुपर वाइट के प्रोडक्ट है
2: कौन से?
0: हाँ, सुपर वाइट, वेरी गुड। और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा यूज करना है।
2: जी जी बिल्कुल,
0: ठीक हो गया जी। कुछ और जी,
2: जो सुन रहे हैं सबको सलाम बाजी, आपको टीम को सलाम,
0: थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज जी। और कुछ कलर्स और साथ साथ हम चलते हैं आगे, और एक खूबसूरत सा कसीदा हम प्ले करते हैं जी, और इसी के साथ हम भी आगे चलते हैं।

फाइनली हम लेंगे इजाजत इंशाल्लाह, मेरी आपसे चिट चैट होगी कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे, सुनने मत भूलिएगा। जिंदगी गुजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स, और सुपर वाइट के प्रोडक्ट जो भी मैंने आपको बताए हैं आपकी स्किन की और आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा मौजूद, इनको यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? तो जरूर यूज करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दिस इज मी आरजे रुखसार, साइन आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमान खुदा, अल्लाह हाफिज।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
5: brought to you by
6: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
7: हुई जो 4 अक्टूबर बाबत भी तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान पारा मदीने में बिजली घरन के निशानों बढ़ाने जी सख्त लफ्जन में मजम्मत हमला चिर डियारींदड़ करार फौरी तौर रोकण जो मुतालबो परडे खाते चयो आए तो हरमिन शरीफन के तकदस इबादत गुजारन पांदीड़न की सलामती जो हर हाल में एहतराम कयो वञे गैर जिम्मेवारन कदमन के फौरी तौर खत्म कयो वञे परवेज शरीफन के तहफुज पैंजे अवाम की हिफाजत बांधण के हिफाजत लाए पाकिस्तान सऊदी अरब से कुलो कुले में मिलाए बीठल है खिते में जटादार अमुन के क्याम लाए भी कोशिश जारी रहंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रेलवेज बारे वजीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी की मुलाकात हनीफ अब्बासी वजीर आजम के रेलवे के मामलों ने तरक्याती मनसूबन से ब्रीफिंग डी वजीर आजम के मुसाफिर की सहूलत ए हिफाजत के यकीनी बनने इसराइता कदम खण की हिदायत शहबाज शरीफ के पटड़ी की वक्सर मरम्मत ए सार संभाल यकीनी बनने अमली कदम खाया वन रेलवे की आमदनी में वादला फ्रेट सर्विस के बहाल कर जरूरी है रेलवे जो निजाम बेहतर बनाया वे। वरे वजीर पारा सूबे में अपग्रेड थियल स्कूल 2 अप्रैल 2027 तक फाल करण की हिदायत वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह की सदारत हेठ स्कूल एजुकेशन खाते जो इजलास सैयद मुराद अली शाह पारा शागिर्दन की दाखिला वधारण लाइ भरपूर मुहिम हलायण की हिदायत वरे वजीर चवा अपग्रेड थियल स्कूल में उस्ताद शागिर्द ए तालीमी सहूलतू पेरे ही डीह मौजूद हुयू रुगो स्कूल तामीर करण मकसद ना है बारन की दाखिला ए मयारी तालीम के यकीनी बनायण है।
8: सब काम छोड़ के हमारा मीडिया जो है वो यही कहेगा कि जी आपको कि मैंने 10 करोड़ लोगों का इलाज किया वो कहेगा जहाज, आपको कि मैंने 2 लाख घरों दर्ज लाए वो कहेगा जहाज, आप कहें कि मैंने 45,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बनाई वो कहेगा जहाज। और हमारे उसमें कहते हैं कि लोग कुछ देर बाद भूल जाते हैं, तो मैंने कल अपनी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा आप ये ना सोचना कि लोग जहाज को भूल जाएंगे, लोग कभी जहाज को भूलेंगे नहीं क्योंकि मरियम नवाज के 5 साल में उनके पास सवाई जहाज की और कोई बात नहीं करनी।
7: पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज बार बार जहाज को जिक्र करण ते मीडिया से नाराज लाहौर में तकरीब के खिताब कंदे मरियम नवाज चयो तवां चयो मु 2 करोड़ माण्हुनि जो इलाज कयो मीडिया चवंदी जहाज अवां चवंदा त 2 लख घर ठाया मीडिया चवंदी जहाज अवां चयो 45,000 किलोमीटर पका रोड ठाराया मीडिया चवंदी जहाज मु उज़मा के चयो अवां जहाज के विसारे छड़ियो माण्हू कॾहिं बि जहाज न विसारींदा उन्हनि खे मरियम नवाज़ जे 5 सालनि जी हुकूमत में सवाइ जहाज जे ॿियो कुझु बि न मिलंदो। केके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्सिस जो ऑपरेशन 7 ख़ारिजी दहशतगर्द मारिजी विया हिदक वारे इलाइक़े में गुजी इतलाउ ऑपरेशन दौरान 7 ख़ारिजनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो सिक्योरिटी फोर्सिस जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में फितना ख़्वारिज ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवायूं जारी आहिनि सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे लाइ पुरज़म आहे।
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
5: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
9: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
10: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
11: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
10: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
11: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
10: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
11: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
10: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
12: सुपर वाइट।
13: खुशखबरी। हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ए हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिक दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
14: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: Are nair, khushk ay beerono ki skin. Har inni jalai cha. Damage ay dull skin ki kayo. Ouch. Par yu kiye, to ke khape Super White Rice Collagen Beauty Cream. Jehme ahin, chawaran jo khubiyo. ऐ कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चामरन जो खूबियो जिल्द मा फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जै जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़ अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

बणाइण जे सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत, हमला चिल ॾियारींदड़ करार फौरी तौर रोकण जो मुतालबो। परडे॒ खाते चयो आहे त हुरमिन शरीफ़नि जे तक़दुस इबादत गुज़ारनि ऐं पांदड़नि जी सलामतीअ जो हर हाल में एतराम कयो वञे। गैर ज़िमेवारनि क़दमनि खे फौरी तौर ख़तम कयो वञे। हुरमिन शरीफ़नि जे तहफ़ुज़ पंहिंजी अवाम जी हिफ़ाज़त मिलाए बीठा, हुन जी क़याम लाइ बि कोशिशूं जारी रहंदियूं। अरब मुल्कनि पारां मदीने में मस्जिद नबवी खे बिजली फराहम कंदड़ गिर्ड ते हुसियन जे हमले जी गिर्ड ते हमले जी तरदीद कंदे चयो आहे त सऊदी कूड़ा इल्ज़ाम बदिरां यमन ते जारी जारियत बंदि कनि। वरी वज़ीर पारां सूबे में अपग्रेड थियल स्कूल 2 अप्रैल 2027 ताईं फाल करण जी हिदायत। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी ज़ारत हेठि स्कूल एजुकेशन खाते जो इजलास सैद मुराद अली शाह पम हलाइण जी हिदायत। ॾींहं मौजूद हुजनि, रुगो स्कूल तामीर करण मक़सदु नाहे, ॿारनि जी दाख़िला ऐं मयारी तालीम खे यकीनी बणाइण आहे।

0: सकरन में जसकमनारी तहरीक पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली। जीएम सैयद चौक खां मीडिया सेंटर ताईं निकतल रैलीअ में वॾे अंग में औरतूं शरीक थियूं। अॻवाणनि चयो आहे त सिंध धरती हज़ारें साल खां क़ाइम आहे, विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। कराची में सिंध सेक्रेटरियट इम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन जे मुतालबनि जी मंथल आहे एहतजाज। मुलाज़मनि मौजूद ॿियनि सूबनि में मुलाज़मनि खे सेक्रेटरियट अलाउंस मिली रहियो आहे, सिंध में छो न मिली रहियो आहे? मुलाज़मनि खे सेक्रेटरियट अलाउंस ॾिनो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। कंबर में शहरनि जे वधंदड़ भुट्टो चौक ते एहतजाज। शादातकोट ज़िलो बदमनीअ जे वर चढ़ी वियो आहे। पुलिस मंशियात ऐं जुआ जे अॾनि तां मंथलियूं उगाड़ण में मसरूफ़ आहे। आई जी सिंध नोटिस वठे अमुन अमान बहाल कराए।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको

0: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ।
1: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली,
0: आवाज की डोर से बंधा हुआ।
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम, यहाँ वहाँ जिए न

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में. डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
3: खुश और बेरोनक की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज और डल स्किन के कयो आउट पर पीओ किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चावरन जो खूबियों और कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे और चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस और झुरन के घट कन और रिंकल्स के घट करे सिर्फ 3 दिन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम और ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुजो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अरे नहीं, खुश्क और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जिनमें आहिन चार अंजू खूबियों ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे, ऐं चामरन जो खूबियो जल्द मां फाइन लाइंस ऐं झुरन के घट कर ऐं रिंकल्स के घट करे, सिर्फ ट्रिम नीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट सुपर वाइट ब्यूटी की हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती, हर भी रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: हक सच जो आवाज, संगीत जो आवाज, GSX सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा
4: रहो। जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: GA FM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क
2: पास।

0: हक्त संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: सच जो आवाज गीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लगिए। से आल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: Super White Rice Collagen Beauty Cream a product by Aksa Cosmetics Pakistan
3: ke maine 2 lakh ghar kar bunaye ho jayega dikhaas aap kahi ke maine 45,000 kilometers jo hai wo sair banaye ho jayega dikhaas aur hamare isme kehte hain ki लोग कुछ देर बाद भूल जाते हैं तो मैंने कल अपनी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को कहा मैंने कहा आप ये ना सोचना कि लोग घास को भूल जाएंगे लोग कभी घास को भूलेंगे नहीं क्योंकि मरियम नवाज के 5 साल में उनके पास सवाई घास के और कोई बात नहीं है।
4: पंजाब जी वजीर आला मरियम नवाज बार बार जहाज जो जिक्र करण ते मीडिया से नाराज लाहौर में तकरीब के खिताब कंदे मरियम नवाज चवाए तवां चओ मु 2 करोड़ मानुन जो इलाज कयो मीडिया चवंदी जहाज अवां चवंदा 2 लख घर ठाया मीडिया चवंदी जहाज अवां चओ 45,000 किलोमीटर पका रोड ठाराया मीडिया चवंदी जहाज मोजमा के चयो अवां जहाज के विसारे छो मानू कडें भी जहाज के न विसारींदा उन्हनि खे मरियम नवाज जे 5 सालनि जी हुकूमत में सिवाय जहाज जे बियो कुझु बि न मिलंदो केपीके जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्सिस जो ऑपरेशन 7 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया आइदक वारे इलाइक़े में ॻुझी इतलाह ते ऑपरेशन दौरान 7 ख़ारजियुनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो सिक्योरिटी फोर्सिस जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में फितन अख़वारे जे ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयूं जारी आहिनि सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे लाइ पुरज़म पीटीआई वफ़द जी जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत जी दावत डि॒नी हाफिज़ नईम चयो आहे त मसलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए ई निकिरी सघे थो जमायत इस्लामी केपीके में गवर्नर राज या एमरजेंसी जी हिमायत न कंदी

नवाज में गुजरे डी गुम थे नौजवान जो झंग में गोलियों लगल लाश हथाय है। विरानी पुलिस वाके वाली हंध पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कर मकतूल नौजवान के गोट नसीर मरीवासी फरादपुर गुलासन मरी तौर सुप कई वही वारसन पारा वाके की शफाफ जांच कराए जवाबदार गिरफ्तार करने मुतालबो। सकरन में दस्तमनारी तहरीक पारा सिंध इम्कानी विरांगे खिलाफ एहतजाजी रैली जीएम सैयद चौक मीडिया सेंटर तई निकतल रैली में वरे अंग में औरतू शरीक अगवाणन सिंध धरती हजारन साल कायम है विरांगो कें भी सूरत में कबूल न है। कराची में सिंध सेक्रेटरी इम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन जो मुतालबन की मंटा ला एहतजाज मुलाजमन मौजूद बेन सूबन में मुलाजमन के सेक्रेटरी अलाउंस मिली रो है सिंध में छो न मिली रो है मुलाजमन के सेक्रेटरी अलाउंस डनो वे सूरत में एहतजाज जो दायरो बधायो वो। कंबर में शहरन के वधंदड़ बदअमनी पुलिस खिलाफ रैली शहरन रैली कढ़ी बुटो चौक से एहतजाज कर मुजाहरीन मौजूद पुलिस की नाहली सबब कंबर शाहदादकोट जिलो बदअमनी के वर चढ़ी वो है पुलिस मंशात जुआ के अड्डन त मंत्री उगाड़ में मसरूफ है आईजी सिंध नोटिस वी अमुन अमान बहाल कराए। खैरपुर में खजी जो बंपर फसल लहण की खुशी में पौरेतन की रैली खजूर मंडी की समय पौरेतन फसल में खजूर मंडी का शाह हुसैन बायपास से छुआरन से भरल बोरियो खड़ी बेहतरीन।

0: शरबत लाशारी मुश्ताक लाशारी ए बेन चौपायो नौजवान के जख्मी किया है। बासर खिलाफ कार्रवाई करे चौपायो माल वापस कराया वे। दादू के गोठ चौदह शहीद जहा रहवासी ब नौजवान पोहरेत कराची में पुरेसरार नमूने गुम थी वह नौजवान मंजूर अली सोलंगी निसार सोलंगी के वारसन जो एहतजाज संदन चवण है तो नौजवान सऊदी वन कराची वया तो संदन फोन नंबर बंद थी वह बिन डी का राबो कटल है शक है तो खेन अगवा कर वो है। सखर के आदमशाह कॉलोनी में अठे क्लास की शागिर्दियाणी मुबैना तौर अगवा वारसन जो एहतजाज नींगरी सोनिया आबासी गुजरियल ढी स्कूल का वापस ईन्दे गुम थी वही है। वारसन जो चवण है तो पुलिस के इतलाह दियण बावजूद इन वक्त ताई न्याणी जो को भी डस पतो न पैजी सको डीआईजी मामले जो नोटिस वठे। रूस कें भी हमले जो इरादो नथो रखे इन जारियत कई तो मास्को भरपूर जवाब दी हर किस्म जहा हथियार इस्तेमाल कद रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटिन नेटो के खबरदार कदे रूस वट इन वक्त अड़ा हथियार मौजूद आन जिनो मिसाल दुनिया में मिलन मुश्किल है। कालिन ग्रेट के खतरो थो तो सब हथियार इस्तेमाल क्या वा।
1: मुन जोधरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में आप प्रोजेक्ट बाय
2: मटियो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो जी 91.6।
3: रात पे भी जाना है वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम वाला कोजे हेल्दी रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन
4: करती हूँ सुपर वाइट एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा वेरियंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट।
6: खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे कने तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर फिजिशियन सीनियर लाइ मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो क्लिनिक में मेडिकल आहे। होम्योपैथिक क्लिनिक बदी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक के सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात के लिए राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद 0.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: 주세요.
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइब्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

अरब मुल्कन पारा मदीने में मस्जिद नबी के बिजली फराहम कंदड़ ग्रिड ते हुसैन के हमले की मजम्मत। हमला मुसलमान लाए चिड़ डियारींदड़ करार। हुसैन ग्रिड ते हमले की तरदीद कंदे सऊदी हुकूमत जा इल्जाम बेबुनियाद। सऊदी इकबरान कूड़ा इल्जाम वण बदरा यमन ते जारी जारियत बंद कन।

0: काम छोड़ के हमारा मीडिया जो है वो यही कहेगा कि जी आप कहते मैंने 10 करोड़ लोगों का इलाज किया वो कहेगा दिखाज, आप कहते मैंने 2 लाख घरों का बनाए वो कहेगा दिखाज, आप कहें कि मैंने 45,000 किलोमीटर जो है वो सड़क बनाई वो कहेगा दिखाज। और मेरे भाव से बात की जाती है तो मेरा भाव नहीं जो पंजाब का भाव है मैं उसको खाते राइडिंग नहीं ले जाऊंगी, वो भाव यही रहेगा कि अभी मुझे सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिल रहा है जो मोबाइल का एनवायरमेंट के ऊपर एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट के ऊपर उन्होंने मुझे नाम दिया एनवायरमेंट वॉरियर का, तो अब मोटरबाइक को वैसे तो नहीं जा सकते। और दूसरे सुबह में मेरा 10 या 11 रुपया भाव है, दूसरे सुबह में 16 बिलियन का हेलीकॉप्टर भी है लेकिन उनका नाम नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं।
1: पंजाब जी वजीर आला मरियम नवाज जहाज जो जिक्र करते मीडिया से नाराज, लाहौर में तकरीब के खिताब कहते मरियम नवाज से तो रुगो जहाज से गालियों थी रही आन जहाज लाइवेंट न खड़ी वेंदस पडे भी वंजलो हों मोटरसाइकिल से न वेंदस लैया डेरा गाजी खान भी मोटरसाइकिल से न वेंदस अवां चो मूं 2 करोड़ माण्हुनि जो इलाज कयो मीडिया चवंदी जहाज, अवां चवंदा त 2 लख घर ठाहिया मीडिया चवंदी जहाज, हुननि खे मरियम नवाज़ जे 5 सालनि जी हुकूमत में जहाज खां सवाइ कुझु न मिलंदो। केपी जे इलाइक़े उत्तर वज़ीरिस्तान में फोर्सिस जो ऑपरेशन 70 ख़ारिजी दहशतगर्द पहुची विया ईदक वारे इलाइक़े में गुझे इतला ते ऑपरेशन दौरान 70 ख़ारिजनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में फितनतुल ख़ारिज ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयूं जारी आहिनि। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दीअ जे मुकमल ख़ात्मे लाइ पुरअज़म। पीटीआई वफ़द जी जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम सां मुलाक़ात, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत जी दावत ॾिनी। हाफिज़ नईम चयो आहे त मसलनि जो हल गालियुनि ज़रिए ई निकिरी सघे थो। जमायत इस्लामी केपी में गवर्नर राज या एमरजेंसी जी हिमायत न कंदी। जाम नवाज़ अली में गुज़िरियल ॾींहुं गुम थियल नौजवान जो जंग मां गोलियूं लॻल लाश हथ, बबराणी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। मक़तूल नौजवान जे घोठ नसीर मरी वासी फरार गुल हसन मरी तौरु सुञाणप कई वई। वारिसन पारां वाके जी शफ़ाफ़ जांच कराए जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। सकरण में जिस्कम नारी तहरीक पारां सिंध जे इम्कानी विरहाॻ ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली, जी एम सैयद चौक खां मीडिया सेंटर ताईं निकितल रैली में वॾे अंग में औरतूं शरीक। अॻवाणनि चयो त सिंध धरती हज़ारे सालनि खां क़ाइम आहे, विरहाॻो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। कराची में सिंध सेक्रेटरियट इम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन जो मुतालबनि जी महताल आहे एहतजाज। मुलाज़मनि मूजिबि ॿियनि सूबनि में मुलाज़मनि खे सेक्रेटरियट अलाउंस मिली रहियो आहे, सिंध में छो न मिली रहियो आहे? मुलाज़मनि खे सेक्रेटरियट अलाउंस ॾिनो वञे ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। कंबर में शहरियुनि जी वधंदड़ बदमनी ऐं पुलिस ख़िलाफ़ रैली, शहरियुनि रैली कढी भुट्टो चौक ते एहतजाज कयो। ज़ाहिरीन मूजिबि पुलिस जी नाहली सबब कंबर शहदादकोट ज़िलो बदमनी जे वर चढ़ी वियो आहे। पुलिस मनशियात ऐं जुआ जे अॾनि तां मंथलियूं उघाइण में मसरूफ़ आहे। आई जी सिंध नोटिस वठी अमन अमान बहाल कराए। खैरपुर में खजी जो बंपर फसल लहण जी ख़ुशी में पोरियतन जी रैली, खजूर मंडी जे सभी पोरियतन फसल लहण जी ख़ुशी में खजूर मंडी खां शाह हुसैन बाईपास ते छुआरनि सां भरियल बोरियूं खणी रक़्स कयो। पोरियतन जो चवण आहे त खैरपुर ज़िले में खजूर जो बहितरीन फसल थियो आहे, आबादगारनि ऐं वापारियुनि सां गॾु पोरियतन खे बि सुठो रोज़गार मिलंदो। सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी डंडोजाम में पेंशन फंड्स में मुबैन आहे हेरा फेरी, रिटायर्ड मुलाज़िम पेंशन लाइ परेशान, उस्तादनि मुलाज़मनि आफिसरनि जो एहतजाज। अॻवाणनि चयो त सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी डंडोजाम में पेंशन ऐं पघारनि जो बुहरान संगीन सूरतयाल अख़्तियार करे वियो आहे, आला अख़्तियारियूं नोटिस वठी ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कनि। संगवाणी में ॻोठाणनि जो बासर ख़िलाफ़ औरतुनि ऐं ॿारनि समेत एहतजाज, ॻोठ रसूलाबाद रवासियुनि एहतजाज कंदे चयो त बासरनि रिटायर्ड SHO शरबत लाशारी, मुश्ताक लाशारी ऐं ॿियनि चौपायो माल फुर करे नौजवाननि खे ज़ख़्मी कयो आहे। बासरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे चौपायो माल वापसि करायो वञे। दादू के घोट चोड़ा शहीदन जा रवासी ब नौजवान फौरियत कराची में पुरसरा नमूने गुम नौजवान मंजूर अली सोलंगी निसार सोलंगी के वारिसन जो एहतजाज संदन चवण है त नौजवान सऊदी वन लाय कराची व्या त संदन फोन नंबर बंद थी व्या बिन डीन का राबतो कटल है शक है त खेन अगवा कर सक्कर की आदमशाह कॉलोनी में अठे क्लास की शागिदानी मुबैना तौर अगवा वारिसन जो एहतजाज निगरीस सनिया वासी गुजरियल दिन स्कूल का वापस इंदे गुम थी वही वारिसन जो चवण है तो पुलिस के इतला देने बावजूद इन वक्त ताई न्याणी जो को भी दस पतो ना है पैजी सको डीआईजी मामले जो नोटिस वटे रूस कें ते भी हमले जो इरादो नथो रखे नेटो जारियत कई तो मॉस्को भरपूर जवाब दींदो हर किस्म जा हथियार इस्तेमाल कंदो रूसी सदर प्यूटन नेटो के खबरदार कदे है तो रूस वट इन वक्त अड़ा हथियार मौजूद आन जिन जो मिसाल दुनिया में मिलन मुश्किल है कालिनेन ग्राड के खतरो थो तो सब हथियार इस्तेमाल क्या वेंदा फ्रांस में शागिदन के एहतजाज शिद्दत अख्तियार करे वरती 400 का वधिक स्कूल बंद पुलिस ए शागिदन विच में चक्रियो केतरे ही गाडियन के बाहे डेई साड़ियो वियो फ्रांस के तालीम वारे वजीर मौजिब मुजाहरन दौरान 88 का वधिक उस्ताद भी जख्मी थे हैं
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
5: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
6: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
6: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
5: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
7: सुपर वाइट
8: खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे जे करे तव्हां कें भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुरानी थी वई आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306-244-7700
9: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
10: उसी खित्ते की बनी है आवाज
9: GAFM नेटवर्क
10: सिंध की आवाज़

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: It's 5:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सचल की सरमस्त धरती,
3: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान.
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
4: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नौ गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट. हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी. बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़. बुधंदा रहो.
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
2: GAFM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह तवाजी ख्वाहिश जरूर पूरी करदा से इंशाल्लाह। त तव्हां इहो ॿुधायो हाणे गानो कहिड़ो ॿुधण वारो ॿुधो था? मुख़्तियार शीदी। ओके, मुख़्तियार शीदी जो कहिड़ो गानो? मुख़्तियार शीदी जो जेको हुजे। ओके, मां पोइ तव्हांजे लाइ अॼु ईअं कयां त पोइ तव्हांजे लाइ इहो मुमताज़ मलाई हलायां। मुख़्तियार शीदी नेक्स्ट टाइम हलाईंदुमि। ओके ओके ओके, मुख़्तियार शीदी जो हलायां थो। कंहिंजे लाइ नथा करणु चाहियो? अच्छा, सही आहे सही आहे सही आहे, ठीकु आहे। थैंक यू सो मच अदा, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। थैंक यू निसार पिताफ़ी साहब। जी जनाब, निसार पिताफ़ी साहब कहते हैं मुझे गाना सुनना है तो मुझे वही वाला सुनना है, अदरवाइज मैंने नहीं सुनना। थैंक यू सो मच निसार भा, तव्हांखे बिल्कुल उहे गानो ॿुधायूं था जेका तव्हां ॿुधण चाहियो था। पर इन सां गॾु हाणे वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल, ॾिसूं था लाइन ते केरु आहे। अस्सलाम वालेकुम। हैलो, वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा प्यारा भाउ, केरु सां सभिनी सां गॾु? मोहम्मद हाशिम इंदर साहब कच्चे खां ॻाल्हायो था, त तव्हांजो कचो कीअं आहे?
2: कचो माशाल्लाह ज़बरदस्त आहे, सावक लॻी पई आहे।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सावक सावक तमामु घणी सुठी हूंदी आहे अखियुनि जे लाइ बि ऐं सिहत जे लाइ बि।
2: जी जी।
1: हा हाशिम भाउ, इहो ॿुधायो त तव्हांखे असांजो शो कीअं लॻंदो आहे?
2: शो तव्हां ॾिसी ज़बरदस्त आहे।
1: हा, घणा माण्हू चवंदा था रोज़ शो कयो, त भला तव्हां छा चाहियो था त रोज़ कयूं? हा बिल्कुलु बिल्कुलु, इनशाला ज़रूर कोशिश कंदासीं। अदा इहो ॿुधायो, मुख़्तियार शीदी हलायां थो, कंहिंजे नाले ते करण चाहियो?
2: अब्दुल भाई डेंडड़ो।
1: जी जी जी।
2: सर्रा डेंडड़ो।
1: जी।
2: अजमेर डेंडड़ो।
1: जी।
2: मुंहिंजो पुट आसान खान डेंडड़ो।
1: अच्छा, थैंक यू। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम हाशिम इंदर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ है हाशिम इंदर साहब और कच्चे से थे जनाब। अब देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको अपना नंबर बताते चले जिसके थ्रू आप हमें कॉल कर सकते हैं, 03000113488। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए मैसेज में SKR स्पेस दीजिए और फिर अपना नाम, शहर का नाम और जनाब अपना मैसेज लिखिए और सेंड कर दीजिए हमें 8881 पर। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, भाई कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो?
1: ठीकु ठाक अलहमदिल्ला। मुंहिंजा प्यारा भाउ, केरु असां सभिनी सां गॾु?
3: साईं सुञातो?
1: न, हबीबुल्ला भाई।
3: हा जी साईं,
1: हबीबुल्ला साहब, कहिड़ा हाल चाल आहिनि तव्हांजा? बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियो?
3: ख़ैर साईं, गांव लॻी पई तव्हां
1: सफ़ा मस्जिद में ॻोठ वारा टा टाइम तव्हांजा
3: साईं? इहो
1: ॻोठ वारा सभु तकिड़ा लॻा पिया आहिनि न? माशाल्लाह माशाल्लाह। हबीबुल्ला भाई, मुख़्तियार शीदी हलायां थो, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? हलो ठीकु आहे, इनशाला मां पूरी पूरी कोशिश कयां थो। तव्हां इहो ॿुधायो, इहो गानो कंहिंजे अच जल्द मुडे जानियारा मूंखे रात बिन निंड न आई। इनशाला हा मां बिल्कुल प्ले थो कयां थोरी देर में, कंहिंजे नाले करणु चाहियो?
3: मुंहिंजा भाइर आहिनि
1: जी,
3: जमील अहमद सोलंकी, अब्दुल गनी सोलंकी,
1: शकीर
3: सोलंकी, गुलाम हैदर सोलंकी, जेके जेके कंदा उन्हनि जे नाम सां।
1: थैंक यू सो मच। जी जनाब, हम प्ले कर चुके हैं मुख़्तियार शीदी, सुनिए और एंजॉय कीजिए और फिर वापस आना बिल्कुल मत भूलिएगा।

0: तो क्या बात है जनाब, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपकी समाजों की नजर किया। और सागर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आप लेते हैं जनाब, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है, शो की कॉल लेते हैं और आपको अपना नंबर बताते चलें। जनाब हमारा नंबर है 03000113488। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल शो भी हो सकते हैं। नजीर धारे जो हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा समर धारे जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस वक्त हमें बड़े गौर के साथ सुन रहे हैं। इसके अलावा जनाब हम जाते हैं अपने मैसेजेस की जानिब। मैसेज में हमें इनामुद्दीन जमाली बलोच ने हमें मैसेज किया है। जनाब कहते हैं अशफाक आपका शो बहुत अच्छा है, हम बड़े गौर के साथ सुनते हैं और बड़े शौक के साथ सुनते हैं। तो बहुत अच्छी बात है जनाब, आप हमारे शो को बड़े गौर के साथ और बड़े शौक के साथ सुनते हैं, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी जनाब कि आप हमें इतने गौर से सुनते हैं और बड़ा मजा आता है आपको हमारे शो को सुनने में। तो जनाब अब हम लेते हैं शो की एक और कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो हेलो जी जनाब, लगता है इनको आवाज हमारी नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं है, कभी कभी कॉल में डिस्टर्बेंस हो जाती है और हम चाहते हैं कि ये कॉल की डिस्टर्बेंस सिर्फ कॉल तक रहे, आप तक ना है। अगर आपकी कॉल नहीं लगती तो आप डिसहार्ट मत हो, आप स्माइल कीजिए और दोबारा से नंबर मिलाइए। तो जनाब आपके जैसे आपके भाई के प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग जनाब कॉल मिला रहे होते हैं, तो कभी कभी नंबर भी बिजी होता है और कभी कभी नंबर नहीं भी लगता है, तो ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है जनाब, हम अगले हफ्ते आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। और आप ट्राई कीजिए, आपका नंबर जरूर लगेगा इंशाल्लाह ताला, और आप हमारे साथ जरूर इस शो में शिरकत करेंगे और हमारे साथ इस शो में आप एंजॉय भी करेंगे। तो जनाब अब लेते हैं शो की एक और कॉल, लेकिन कॉल लेने से पहले आपको नंबर में जरूर बताते चलूं, 03000113488 हमारा नंबर है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जनाब अब फाइनली हम देते हैं एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो ओए हेलो अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक मुझे प्यारा भाग के रहा सबनी संग गड जी जी जी के रहा सबनी संग गड भाऊ
1: गरीब नवाज चावरी साईं। गरीब नवाज चावरी,
0: गरीब नवाज चावरी साहब कितना कॉल किया था असके
1: अरे सकर शहर को सर
0: माशाल्लाह। गरीब नवाज भाई केड़ा हाल चाल है, ठीक ठाक आयो, कम कार किए तो लेता जो अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त ये सुठी गाल है। तमाम मौज मस्ती कयो
1: लगो अल्लाह वता जो इंतजार का इंतजार शुरू हो निकाली हम जाके मन भा खराब से ते मले जो का चाचा थे।
0: हां बिल्कुल हाने कचरी थी भैया ता के ता सा गड मुजी मुके भी तमाम घणो भलो लगयो है। गरीब नवाज भा मां मुमताज मलाई मां मुमताज मलाई प्ले कयो है, केंजे नाले से कण चायो जी जी जी जी थैंक यू सो मच गरीब नवाज चावरी साहब। भाई शौकत चावरी का असा सलाम दीजो, वो असा जो तमाम घणो पुराना कॉलर है पर अल्लाह काते गुम थी वियो
1: सर अल्लाह काते गुम थी आया ता के जदा चोदा दे ने लाइन ते आने
0: भाई अल्लाह ही लाइन ते आने पर हणी असा दुआ कर सकू ता
1: थैंक यू चाओ इंशाल्लाह लाइन
0: ते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच गरीब नवाज भाई, थैंक यू जी जनाब। रफीक जुदई की फरमाइश पर हम प्ले करेंगे बहुत प्यारा सा गाना सिक एहड़ी शया। इस गाने को सुनिए, हमारे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए हमारे शो GFM 88 नेटवर्क पर। आपका अपना शो है आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।

0: नवमय जहिड़ी सूरतहाल पैदा करण वारी कोशिश खे सख़्ती सां मोह ॾिनो वेंदो। कोर कमांडर्स वाज़े करे छॾियो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी सदारत हेठ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्की सिक्योरिटी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वियो। हर क़िस्म जे ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ आला सतही ऑपरेशनल तयारी बरक़रार रखण वारे अज़म जो बि वरजाओ। पाकिस्तान जे दिफ़ाई हक़ वारे अज़म जो तौसीक। अफ़गानिस्तान मां जनम वठण दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ टारगेटेड कार्रवायूं जारी रखण वारे अज़म जो बि वरजाओ। दहशतगर्दनि जी सहूलतकारी कंदड़ तालिबान क़यादत नतीजनि जी ज़िमेवार क़रार। हुकूमत ऐं पीटीआई विच में ॻाल्हियुनि जो पहिरियों दौर बिना नतीजे ख़तम। हुकूमत ऐं पीपुल्स पार्टीअ जो अपोज़िशन खे क़ौमी मसइलनि जो हल ॻाल्हियुनि ज़रिए कढण ते ज़ोर। ॿिन्ही धुरियुनि जूं ॻाल्हियूं जारी रखण ऐं सुभाणे ॿीहर गॾिजाणी करण ते इतफ़ाक़। स्पीकर ऑफिस पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त हुकूमत पीपुल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन विच में मुल्की सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थियूं। हुकूमत पीपुल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन हिक ॿिए खे पंहिंजे मौक़िफ़ खां आगाह कयो। स्पीकर अयाज़ सादिक ॻाल्हियुनि लाइ अहम किरदार अदा कयो। ॻाल्हियुनि में हुकूमत तर्फ़ां घरू वज़ीर मोहसिन नकवी, राणा सनाउल्लाह, अमीर मक़ाम तारिक फज़ल चौधरी ऐं तलाल चौधरी शरीक। पीपुल्स पार्टी जी नुमाइंदगी शेरी रहमान, नवीद कमर ऐं एजाज़ जखराणी कई। पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर गोहर राजा, नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आमिर डोगर ऐं हलीम आदिल शेख शामिल हुआ।
1: ये पहला मरतबा है कि हमारी और हुकूमत की ऐसी कमेटी बनी है जिसमें हम सारे लोग मौजूद है स्पीकर साहब के चैम्बर में। मुस्बत पहलू यही है कि कंटिन्यू है, कल इंशाल्लाह ताला
2: हमारा गवर्नमेंट से भी कोई नुमाइंदगान शामिल होंगे,
1: यही कमेटी होगी, यही हमारी कमेटी है। खान साहब के जो अहकाम होते हैं हम हमेशा खान साहब के अहकाम ही पे अमल दरामद करते रहे।
3: असल ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, कल फिर मीटिंग होगी, बातचीत होगी, उसके बाद फिर फैसला होगा क्या करना है।
0: हुकूमत सां सुठे माहौल में ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर सुभाणे मंझंदि 2 वॻे थींदो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त उमेद आहे त सूरतहाल बहितरी तरफ़ वेंदी। सेनेट में अपोज़िशन लीडर चयो त असां पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾिनियूं आहिनि, हुकूमत पंहिंजूं तजवीज़ूं ॾे, ॿीहर ॻाल्हियूं सुभाणे थींदियूं। पीपुल्स पार्टी पीटीआई खां हिकु भेरो ॿीहर लॉन्ग मार्च गैर मशरू तौर ख़त्म करण जो मुतालबो करे छॾियो। पीटीआई सां ॻाल्हियूं कंदड़ पीपुल्स पार्टी टीम में शामिल सेनेटर शेरी रहमान चयो त लॉन्ग मार्च जी तारीख़ वधाइण या मुलतवी करण सां मसइलो हल न थींदो। पीटीआई लॉन्ग मार्च गैर मशरू तौर ख़त्म करे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जी सूरतहाल इंतिहाई ख़राब आहे, कॾहिं बि हिकु फर्द लाइ लॉन्ग मार्च नाहे थींदो। कोशिश हूंदी त सुभाणे ॻाल्हियूं कंहिं नतीजे ते पहुचनि।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिपके चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
6: सचल की सर मस्त धरती,
7: फातिह मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
6: GAFM 88 नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज। फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
8: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
9: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
8: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
9: अच्छा, वेरियंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
10: छा तव्हां जो ख़्वाबु आहे डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण? त पोइ तव्हां लाइ आहे हिकु बहितरीन मौक़ो। सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में हिन सेशन लाइ दाख़िलाऊं जारी आहिनि। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी DPD, 5 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA। खास सहूलतों, स्कॉलरशिप मौजूद। बिन सालंजे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जरे तो डीपीडी प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस, फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, फिजियोथेरेपी, ओपीडी जी बेहतरीन सहूलत। ये इदारो सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो, सीट्स महदूद आहिन, तहें करे पेंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अॼु ई दाखिला वठो। एक खास गाल, इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस, ओटी, हेल्थ टेक्नीशियन बिया सब कोर्सेस पिण थींदा आहिन। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबतो 07115635642 03108166111।
11: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे, तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अमां जे शहर सखर में। मेदे जा मसला, गैस, बदहजमी, कब्ज, खूनी एं बादी बवासीर, जनाना बीमार।
12: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़, उधंदा रहो।
13: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
14: उसी खित्ते की बनी है आवाज़,
13: जीए एफएम नेटवर्क,
14: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो
1: आता है।
2: हाँ।
1: तो हमें कभी कभी कम भी हो जाता है,
2: सही,
1: और सीखने की सलाह कभी कभी हमें कम भी हो जाती है।
2: हाँ।
1: और जहाँ पर हमें सीखना होता है वहाँ पर हम नहीं सीखते और ये कहते हैं यार छोड़ो ये फजूल काम है।
2: हाँ।
1: लेकिन आगे चलकर फिर हमें ये होता है कि यार क्या पता इसमें अगर हम थोड़ा सा अप्लाई करते सीखते कुछ काम करते हैं तो काश आज हम आगे निकल जाते।
2: ओ मेरे फलसफी भाई, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि आप में वो कौन सी आदतें हैं ये बताएं बस।
1: यार मुझे कोई आदत नहीं, मैं किसी काम का बंदा नहीं।
2: नहीं नहीं आप बहुत काम के बंदे हैं। आप में जो मैंने बोला कि आप में टॉलरेंस है, बर्दाश्त है और सब्र है आप में।
1: हाँ भाई बर्दाश्त इतनी नहीं है।
2: नहीं है ना, अच्छा
1: भी इतना नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं आज काम करूँ ना।
2: हाँ।
1: वो आज हो जाए,
2: उसका नतीजा भी आज ही निकला है।
1: आज निकला है, बुरा है, अच्छा है, कैसा है,
2: आय हाय हाय, मुस्तकिल मिजाजी भी नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी।
1: लेकिन अश्ताक भाई जो अल्लाह के बस में अल्लाह के हाथ में ना काम, हम कुछ भी करें वो अपने टाइम पर होंगे, लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि हमारे काम जल्दी हो जाए।
2: हाँ।
1: और परों का कहना है पता है क्या,
2: हाँ,
1: कसर जाते रहे सबूरा दस्त हो रहा है।
2: हाँ। मनाइयो निभा गई।
1: हाँ
2: चलो कोई गल अला साईं का दुआ था क्यों यो निभाग जे में भी आए मुझ समेत वो सब खत्म थी बने आई असा आमे बर्दाश्त भी अची बने आई असा मुस्तकिल मिजाज भी थी बने असा डिसिप्लिन भी थी बने ताकि असा के कामयाबी जल्दी मिली सके। इन
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: अच्छा मां ताजे हाने ज़हनी अजमाइश थोड़ो ताजी कदम यो बुधायो हाने एकड़ो दोस्त आयो ने चयो मके फौजी समूरो जो गानो बुधायो तो वो केड़ो गानो बुधायो ने उन्हें केड़ो चयो
1: उन्हीं जेको भी चयो पर मां चंदम तुझे कूड़ में
2: अच्छा उनके मां एक्चुअली भूली भी मां विसरी हम तेरी माता का पूछियो हलो ठीक है मां यू गानो बिल्कुल तो प्ले किया फौजा सुमरो जी टे फरमाइश हो चुका है तांजी एक अदे जी आई आकड़ी पहले कॉल कई और एकड़ी असा के फरमाइश आई है कैंखा कैंखा कैंखा अब्दुल रजाक
1: तुम्हारे पास में आज भूल गया पता है नहीं कि क्यों लेकिन अभी अभी याद आ गया।
2: अभी भी भूल गए होती सारी बातों के बाद कोई बात।
1: हाँ बातों की बात ये पता है कौन सी है।
2: नहीं
1: अक्सर लोग तमाम लोग जो भी दुनिया में फ्राइडे के दिन छुट्टी करते हैं आप काम करते हैं।
2: तो ये मेरा एंटरटेनमेंट का काम है मैं काम मैं इसको काम समझते नहीं हूँ ना मैं इसके इसको अपने दोस्तों के साथ गपशप समझता हूँ आप सब मेरे दोस्त हैं और
1: पूरी नहीं हुई भाई
2: मैं आपकी बात समझ गया था ना जड़ तक पहुँच गया था
1: लेकिन सुने ना।
2: हाँ सुनाए ना
1: लोग सारा हफ्ता काम करते हैं आप देख जाते हैं
2: जी जी
1: जिस दिन लोग छुट्टी करते हैं आप आते हैं ये भी अच्छा है कि आप छुट्टी करते हैं लोग घर में बैठते हैं और आप आकर हमें एंटरटेनमेंट करते हैं कभी कभी फरमाइश पूरी करते हैं
2: बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे से भाई कितनी अच्छी बात की
1: लेकिन अक्सर फरमाइश पूरी ना हो जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि ये फरमाइश प्रोग्राम नहीं है अच्छा भाई।
2: हाँ बिल्कुल मैं वो तो मैं आपके आप लोगों के साथ गपशप करने आता हूँ आपको एंटरटेन करने आता हूँ और फरमाइशें भी पूरी कर देता हूँ क्योंकि आपकी फरमाइशें मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है।
1: तुम लोगों का कहूँ ना चला ना
2: हाँ
1: मैं अगले हफ्ते आपसे लड़ाई नहीं करूंगा मैं... यार मेरा क्यों नहीं जलाया।
2: नहीं नहीं लड़ाई तो मेरा कोई भी लिस्नर नहीं करता सब मेरे प्यारे दोस्त हैं
1: लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए ना ये आप एक बंदा है हम कितने लोग हैं आपके पीछे पीछे
2: सही रजिया फंस गए गुंडों में
1: कर रहा है कोई काम कर रहा
2: है रजिया फंस गए गुंडों में है ऐसे ही है ना
1: बिल्कुल।
2: अच्छा इरफान में गाना चलाने लगा हूँ किसके नाम गाना चाहोगे
1: सलाम सिस्टर मिसेस अली फौजिया फरजाना और सिस्टर दुआ खान रायत सिमर ममता सिमर हुसैन बकिसरो हाफिज गुलाम अहमद सांबर लुकमान चाचा अब्दुल्ला बंगार बच्चल चंबानी नजीर मंगीर सिकंदर चंबानी जो भी सुन रहे हैं सबको इरफान अली तेरो की तरफ से बहुत सारा सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम इरफान अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
1: थैंक यू सो मच
2: सेम टू यू। बिल्कुल जनाब हमारे साथ बहुत प्यारे से इरफान अली थे वो और जब भी आते हैं जनाब रौनक लगा लेते हैं बहुत अच्छे कॉलर हैं हमारे और बहुत सेंसिटिव बहुत समझदार और बहुत सेंसिबल हैं। थैंक यू सो मच इरफान अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे साथ हैं अब्दुल रजाक कुंभार और एक और भाई की फरमाइश भी आई थी हमारे पास फौजिया सुमरो की इरफान ने भी की है चलाते हैं फौजिया सुमरो थोड़ी देर में लेकिन लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम
3: हेलो
2: अच जल्द मुड़े जानेड़ा मुखे रात भी निंड न आई। कैसे हैं आप ठीक ठाक। हेलो कौन हमारे साथ है मुझे तो वहीद भाई की आवाज लगी वहीद जतोई साहब की लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। हेलो वहीद भा क्या हो गया एनीवे कोई बात नहीं है, अब हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। मेरे लिए वसीम चाय लेकर आया है, बहुत प्यारी सी चाय, थैंक यू वसीम। आप भी चाय पिए अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने यारों के साथ, और जनाब हमारे शो में जरूर पार्टिसिपेट करें। अब बोरे मरी यासी कॉल भी कर जी भाई, वहीद भाई जी अला छो आवाज भी कौन आई पर हाँ बैठो शो जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, केरे सा सबनी सा गड सोना भाई, कैसे हैं सोना भाई? इतनी अच्छी बात है यार, खैर तो है।
0: बस क्या करें अशोक भाई, आपका प्रोग्राम हम सुनते हैं, कभी कभी जो है दूसरों को टाइम देना चाहिए सर।
2: हाय क्या बात है जनाब, इतने समझदार मेरे सोना भाई, आप कैसे हैं और आपका गांव कैसा है, आपके घर वाले कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं?
0: सब बिल्कुल ठीक है, और गाँव वाले सब मेरे देश के सब जो है सारे ठीक है, और सारे आपका जो सिलते
2: हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चाय भाई पी ली आपने?
0: सर अभी मैं पी रहा हूँ सर, किसी होता ना सर, आपका शो भी सुन रहा
2: हूँ। क्या बात है, चीयर्स कीजिए, मेरे हाथ में भी कप का चाय का कप है।
0: जी जी बिल्कुल, हमने कॉल सुनी थी बड़ी लंबी थी, कोई मसला नहीं है, हमने प्रोग्राम आपका कंटिन्यू सुनते हैं सर।
2: हाँ देख लें इरफान भाई, आपकी कॉल्स बहुत लंबी होती हैं, मैं अब बता रहा हूँ आपको, आपकी कॉल्स में सिर्फ 15 सेकंड तक लूंगा।
0: हम नहीं कह देंगे इरफान भाई को, क्योंकि हमारी बात से हो सके वो नाराज भी हो।
2: नहीं नहीं, इरफान बहुत अच्छा बंदा है, नाराज नहीं होता। जी जी नाराज नहीं होता, वो नाराज बिल्कुल नहीं होते इरफान भाई,
0: नाराज नहीं होना चाहिए, कम से कम उसको जो है ना 2 मिनट कार चलानी चाहिए।
2: देखो सुनो इरफान, ठीक है ना आप? हूँ आराम है, ओके। अच्छा सोना भाई ये बताओ, गाना चला रहा हूँ सुवजिया सुमरो का, किसके नाम करना चाहोगे आप?
0: हाँ सर, नाम सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम से हम नाम कर लेंगे, ये सोजिया को, और उससे बात जो भी सुन रहे हैं अभी हमारे बहुत सारे दोस्त है जो है, सबसे पहला हमारा जो दोस्त है अली गुलकतर है, वो आपको सुन रहा है, उसको ये गाना हम डेडिकेट कर लेंगे, उसके बाद में बच्ची चंपानी उसको डेडिकेट कर लेंगे, और अपना बंगवार है शिकारपुर से जमाल दिन भयो है, उसको भी ये गाना हम डेडिकेट कर लेंगे, बाकी जो भी मेरे भाई और बहने सुन रहे हैं सबको, और हमारा सॉन्ग वही सर ने तेरा मुखड़ा हासिल जादू कर दिया।
2: जी जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं आपका आपकी फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा सोना भाई।
0: बस सर कोशिश पूरी करेंगे, हम भी
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। ठीक है ठीक है, थैंक यू सोना भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे साथ बहुत ही प्यारे से सोना सोना भाई, और जनाब हम लेते हैं शोखी एक और कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन चैन पे कौन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और लेते हैं शोखी एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम सर।
2: हाँ जी के रसा सबरी संग
0: सर, मोर जितो बागर
2: सॉरी
0: मोर जितो बागर जी का,
2: मोर जितो बागर जी का, मोर भाग के हाल चाल तबाब
0: सर, घर घर काम बुधाओ का सिचाय जो करा
2: सफा सफा मजे में, ये बुधाओ कम कार किए चले ता जो
0: बहुत सर शुक्रा माल पे
2: माशाल्लाह माशाल्लाह, बागर जी वाला सब तकड़ा लगा प्यान

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अरे खुश्क और बीरोनों की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहमे आहिन चावरन जो खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावरन जो खूबियों जल्द मा फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल बीहन में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: का एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगेटिव लोगों के साथ तो बिल्कुल मत बैठिए, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के साथ आप अपने वक्त को गुजारें, जो आपको आगे बढ़ने का हौसला दें, जो कि आपको आपके हौसले बढ़ाएं। जो हर वक्त दूसरों की बुराई करते रहते हैं, उनकी गुफ्तगू से जरा फासला रखना भी ज़हनी सुकून का हिस्सा होता है। अगर आप नेगेटिव लोगों से और बुराई करने वाले लोगों से थोड़ा साइड लेंगे और उनसे पास वो करेंगे, तो फिर यकीन जानिए आप बहुत ज्यादा ज़हनी सुकून में आ जाएंगे। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जनाब आपको पता है कि बहुत से लोगों से बहस करना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोश रहना भी समझदारी होती है, और हर शख्स को अपनी जिंदगी में जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को जवाब वक्त देता है। आप अपना काम करते जाएं, अपनी शख्सियत बनाते जाएं और अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएं, जिस तरह हम अभी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और ले रहे हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। मुझे प्यारा भा खेर सा सबनी सा गड अयाज अली भुट्टो जी। भुट्टो कैसे हैं आप? ठीक ठाक अलहमदुल्ला। अयाज अली भुट्टो साहब छा कम कार कंदा आयो तमां कैसा पंजे प्रोग्राम में भली कार चाहूं था। आई थिंक फर्स्ट टाइम आया हो तां। हां
1: सही।
0: हां छा कंदा आयो अयाज भाव?
1: अच्छा भाई बागन जो कम कंदा
0: हो। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। केड़ा बागन केड़ा फ्रूट ते हाने लगा आइन? माशाल्लाह माशाल्लाह। जैतून मतलब सुठा सुठा थे तांजे बाग में? अच्छा अच्छा अच्छा सही सही सही सही। मतलब तांजो कम कार सीख हलो तो?
1: हाँ कम कार हलो तो।
0: अच्छा अयाज भाई तांके असो प्रोग्राम के लगन दो आ
1: प्रोग्राम भाई ताने फॉलो लगन दो
0: आ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अयाज जी जी जी अयाज भाई यो बुधायो त तमा सा गड़ी जका मानु वेंदा आइन उआ जका आइन तांके हिम्मत दींदा आइन हौसलो दींदा आइन या वरी मानु जी बुराई कंदा आइन? हाँ सुठी गाल आ सुठी गाल। अड़न मानु सा वेंदा कयो, बाकी जेका मानु जी गिलाओ कन बुराईयो कन तांके डिग्रेड कन त उनन मानु सा गड न वेण खपे। वेरी गुड वेरी गुड अयाज भाई। अयाज भाई हां हां हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा वेरी हाँ गुडा गुडा गुडा जबरदस्त। अच्छा अयाज भाई गानो कड़ो बुधन चाहियो था?
1: गानो
0: मुख्तियार सीधी तमा हाने प्ले कयो आ? अच्छा अच्छा अच्छा मुख्तियार सीधी केड़ो गानो? ओके सोना तो सा लगे या दिल। ओके कहीं जे नाल थकना चाहियो?
1: नाल रे साई अमल सचल भट्टो।
0: जी जी
1: बुलावतुल भट्टो अलीदोर भट्टो।
0: जी जी
1: पेट भट्टो।
0: जी जी
1: समझो दली भट्टो।
0: जी जी
1: जीतो धार बदन ता सब असलम।
0: ओके वालेकुम अस्सलाम अयाज भुट्टो साहब, थैंक यू सो मच। ओके हमारे साथ ही अयाज भुट्टो भाई, और अयाज भुट्टो भाई के बाद हम जनाब लेते हैं शो की एक और कॉल। देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। पॉजिटिव एनर्जी है जिस भाई में, क्योंकि हमारे साथ जितने भी दोस्त आते हैं, जितने भी कॉलर्स आते हैं, सब में अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक जबरदस्ती एनर्जी है जिसको बूस्ट मिलता है हमारे शो में आकर। तो लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब अगेन अगेन अगेन अगेन अगेन कॉल में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है, पर कोई बात नहीं है। सिग्नल्स प्रॉब्लम है पर कोई बात नहीं है। आपके कॉल कट जाती है कोई बात नहीं है। हिम्मत ते मर्दा मदद खुदा, अपने अंदर हिम्मत जारी रखिए और हमें कॉल करते करते जनाब आप अपने टाइम को जबरदस्त तरीके से स्पेंड कीजिए और जिंदगी में थोड़ा सा मजा रखिए। फनी जिंदगी में बातें करें, फनी चीजों को ऐड करें, ताकि आपकी जिंदगी जो है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाए। तो बिल्कुल जनाब जिंदगी में थोड़ा मजा ना हो तो जिंदगी भी मोबाइल की तरह लो बैटरी जैसी लगती है, ऐसा है ना? बिल्कुल जनाब। और सुबह जब आंख खुलती है तो इंसान सबसे पहले मोबाइल देखता है, फिर व्हाट्सएप चेक करता है, फिर फेसबुक, फिर टिकटॉक और फिर इंस्टाग्राम। तो जनाब ये सब चीजें हमारी लाइफ में चलती रहती है और हम सब इन चीजों को देखते रहते हैं ना, और फिर अचानक ख्याल आता है अरे भाई मैं यहाँ किस काम के लिए आया था। ये मोबाइल भी अजीब चीज है दोस्तों, हमको दुनिया से बेगाना कर देता है। हम कहते हैं कि 5 मिनट इस्तेमाल करेंगे और फिर जब हम घुसते हैं मोबाइल में तो जनाब 1 घंटे बाद एहसास होता है कि 5 मिनट तो शायद किसी और दुनिया के थे। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, मसला इस्तेमाल का होता है। मोबाइल को अपनी जिंदगी का मालिक न बनाएं, उसे अपनी जिंदगी का एक टूल बनाएं। मालूमात के लिए इस्तेमाल करें, सीखने के लिए इस्तेमाल करें, कॉल के लिए इस्तेमाल करें, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन हकीकी जिंदगी के लोगों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज ना करें कि मोबाइल की स्क्रीन पर ज्यादा दिलचस्प दुनिया नजर आती है। कभी मोबाइल एक तरफ रखें और सामने बैठे इंसान से बात भी करें। यह भी एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है जो आप जरूर करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चार दोस्त अगर इकट्ठे होते हैं या पांच दूसरे इकट्ठे होते हैं और ग्रुप, तो फिर हम सब वही मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं। तो भाई जब हम चार दोस्त या पांच दोस्त इकट्ठे बैठे हैं तो मोबाइल का क्या काम, मोबाइल को घर पे रख के क्यों नहीं आते, बंद करके क्यों नहीं आते? अगर हमने गपशप ही करनी है दोस्तों के साथ और गपशप के लिए जमा हुए हैं तो फिर मोबाइल में क्यों गुस्से हुए? तो वही गपशप हम मोबाइल पे कर लेते, इतने दूर सफर करने से भी बच जाते, दोस्तों के पास आने से भी बच जाते, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते। तो जनाब ये चीजें होती हैं जो कि बहुत मायने रखती हैं जिंदगी में। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक मुझे प्यारा मिठा भाग के सबरी सा करो। अच्छा फकीर रजब अली साहब, क्या हाल चाल है तांजा?
1: दुआ लख है
0: माशाल्लाह माशाल्लाह। किथा कॉल की तांखे, केड़े गोठ में? कंडोवाण खां। जी जी फकीर साहब, यो बुधायो त तां जो कम कार किए तो ले?
1: बाबा कब का नान जे को अन तो मचा नान को नने बाबा आचन से वाली बाबा का टेक सारन जा।
0: अच्छा माने सुठो हले तो तां जो कम कार?
1: जी जी बस ना तम जोरी पा के आ रहे तो गुजारो करे तो
0: इंसान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह साईं जो करम, अल्लाह साईं जो करम है माना जी एग्जैक्टली, हर हाल में अल्लाह साईं जो शुक्र अदा करना खपे,
1: शुक्र अदा करना
0: बिल्कुल।
1: बाकी आने दौर की हालात की सब ताके मालूम होता बाकी आने के आन एयर वे ही ठग लायो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रजा भाई बुधाए तां के असा जो प्रोग्राम के लगंदो आ
1: बेहतरीन देखो आप
0: कमर्शियल घट हलायो अदा ये कमर्शियल रोजी रोटी हलंदी आ
1: बाबा साईं आहे पर जेको
0: आहे बिल्कुल। इन लाइ असां ॿ कलाक प्रोग्राम कंदा आहियूं त जीअं असां बि तव्हांखे ॿुधण में वधीक अचूं, तव्हां बि असांखे ॿुधण में वधीक अचो।
1: इहो हक़ीक़त आहे पर हाणे जेको आहे चालीह पंजतालीह जेको आहे कलाक वञे थो
0: साईं तव्हांजी फरमाइश, तव्हांजी सजेशन रखियनि थे, इनशा ताला ॾिसंदासीं इन मसइले खे बि।
1: असां ख़ुदि जेको आहे बाबा साहब ॻाल्हायो आहे मुंहिंजे भाउ हुन जे लाइ
0: जी जी बिल्कुल
1: असांजो प्यारो दोस्त आहे
0: जी जी
1: पुराणो जेको आहे वास्तु साईं शाहबाज़ जेको आहे प्रोग्राम कंदो
0: जी जी जी
1: पुराणा दोस्त जेको आहे हिकिड़ो जेको आहे जमाल साहब आदि चवनी प्रोग्राम राति जो करे
0: जी जी एग्जैक्टली सभु सभु असांजा सुठा अर्ज़ आहिनि तव्हां तव्हां सभिनी जा दोस्त आहिनि भाउ आहिनि
1: तव्हां सभु असांजा आर्ज जेके भई सुठा आहिनि
0: जी जी
1: जे लाइ सभिनी खे ख़ुशि रखे पर हाणे हिकिड़ो मां कलाम ॿुधाए अॼु तव्हां एतिरो ॻाल्हायो
0: हा कहिड़ो कलाम
1: मंज़ूर जो को पुराणो कलाम ॿुधाए को सुठो जेको आहे
0: हलो ठीकु आहे मां इनशाला एंड में तव्हांखे ॿुधायां थो प्रोग्राम जे एंड में
1: ॿुधायो पर पोइ जीअं थोरो ॿ टे मिंट ॾिजोसि त कुझु हले ॿ टे मिंट
0: जी जी इनशाला इनशाला एंड में हलाईंदुमि त हलंदो इनशाला कहिड़ो आहे कोई बि हलायां
1: ख़ुशियूं था करे मुंहिंजा भाउ।
0: अच्छा मुख़्तियार सिधी जो कहिड़ो गानो हलायां मां?
1: जी बाबा
0: मुख़्तियार सिधी हलायां कहिड़ो बि गानो?
1: न मुख़्तियार सिधी न मंज़ूर
0: मंज़ूर सखिराणी सॉरी हा मंज़ूर सखिराणी सर
1: जो पुराणो कलाम जेको पुराणा जेके कलाम अथसि उन मज़ा।
0: ओके ओके ओके इनशा इनशा कंहिंजे नाले ते करणु चाहे उहो गानो?
1: उहो साईं मां पंहिंजे प्यारे दोस्त जेको आहे
0: थैंक यू सर
1: पंहिंजो
0: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वाली मदद। जनाब हमारे साथ थे बहुत प्यारे से कॉलर रजब भाई, इनको सुनवाते हैं जबरदस्त गाना, उसके बाद मंज़ूर सखिराणी प्ले करेंगे, तब तक आप हमारे साथ रहिए।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: तवाजो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज
4: जीए FM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

उसे दोबारा याद करें और जो इंसान आप बनना चाहते हैं उसकी तरफ आज ही एक कदम बढ़ाएं। मैं था आपका अपना अशफाक नियाज़ी और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने लोगों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जिंदगी को दिल से जिए। आवाज जो दिलों को जोड़ दे, GFM 88 नेटवर्क सुनते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एंजॉय कीजिए मंजूर सुकरानी का बेहतरीन गाना। तो नेक्स्ट फ्राइडे

हाँ कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जे FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अरे न खुश बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जह में आहिन चावरन जो खूबियों ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चावरन जो खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन नीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सुपर वाइट्स राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: फैसला फोरम पर आप हैं फाइव मुआहदे जिया जिया जारी रखना जो बिगड़ जाओ सिम जी हिमायत सा फौज मुख्तियारी इलाका

कढण ते ज़ोर, ॿिन्ही धुरनि जो ॻाल्हि रखणु सुभाणे ॿीहर गॾिजाणी करण ते इतफ़ाक़। स्पीकर ऑफिस पारां जारी कयल बयान मूजिब हुकूमत पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन इतिहाद ते ॻाल्हियूं थियूं ऐं अपोज़िशन हिक ॿिए खे पंहिंजी मौक़े आगाह कयो। स्पीकर पीपल्स पार्टी जे नुमाइंदगी शेरी रहमान, नवीद कमर ऐं एजाज़ जखरानी कई। पीटीआई वफ़द में बैरिस्टर नासिर अब्बास, सलमान

राजा असद कैसर अली मादिल शेख शामिल हुआ। सुशी माहौल में आहिनि ॻाल्हियुनि जो बियो दौर मंझंदि ॿ वॻे थींदो। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर में बहितरीअ तरफ़ वेंदी। सेनेट में अपोजिशन लीडर चयो त असां ॾिनियूं आहिनि, हुकूमत पंहिंजो तजवीज़ूं ॾे, ॿीहर ॻाल्हियूं सुभाणे थींदियूं।

0: पार्टी पीटीआई का एक भेरो बीहर लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर खत्म करने जो मुतालबो करे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी विच में गालिन के सुठो सवण करार दींदे चयो तो मुखालिफ दुर पंहिंजो लॉन्ग मार्च गैर मशरूत तौर खत्म कंदी पाकिस्तान दहशतगर्द के मिलंदड़ फाल हिमायत गणती जोगी आहे। शेरी रहमान चयो त लॉन्ग मार्च जी तारीख़ वधाइण या मुलतवी करण सां मसरो पीटीआई लॉन्ग मार्च ही ख़त्म करे छॾे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलियत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर खां खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे खां शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़। उधंदा रहो
2: कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: जवाबात उदरदाराओं
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: धरती से जुड़ा
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

जवां मेरी जान जहां है ये जिंदगी हसी जिंदगी का है निशान मेरी जान ए जाने जा

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a project by Pakistan.
2: नवमय जी सूरतहाल पैदा करण वाली कोशिश के सख्ती सूरतहाल जो जायज़ो वरतो ऑपरेशन रखण वाले अज़म सिपाही हक अज़म दहशतगर्दन खे नेशनल एक्शन प्लान तहत अवाम जी फलाह ते बदल हुकुमरानी ऐं जोड़ जो ख़ात्मो करार सलाहती अंदाज़ में कश्मीरनि जी